मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आज मंगलवार शक संवत 1948 ज्येष्ठ माह की पंचमी तदनुसार 26 मई 2026 है। इस समय प्रातः के 5:56 और 58 सेकेंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण मंगल ध्वनि से प्रारंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः 6 बजने को है। अब हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान

0: ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। आज का विचार इस कार्यक्रम में आज सुनिए गुण का विकास विषय पर श्री अगरचंद नाहटा से उनके विचार।
2: संसार में प्राय प्रत्येक व्यक्ति के सामने यह समस्या उपस्थित है कि वह अपने जीवन को उन्नत कैसे करे। उसे अपनी वर्तमान स्थिति से संतोष नहीं होता, अपनी ओर से वह निरंतर उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता रहता है, पर उसमें सफलता बहुत ही कम लोगों को मिलती है। इसका मुख्य उपाय यह है कि इस तरह में चिंतन करने की जरूरत है। हम में सबसे बड़ा दुर्गुण है पर दोष दर्शन। हम दूसरों के छोटे छोटे दोषों को बड़ा बनाकर या बताकर प्रचार करते रहते हैं और उनके गुणों की ओर ध्यान नहीं देते, जबकि होना उससे उल्टा चाहिए। दोष तो अपने देखने चाहिए और गुण दूसरों के। दूसरों के दोष देखने व निंदा करने से हमारे में भी दोष पनपने लगेंगे, और दूसरों के गुण चाहे छोटे ही हों उनको बड़ा मानकर हम अपनाने से हमारे में गुणों का विकास होगा। गुणों के विकास का सरल उपाय यह है कि जिन व्यक्तियों में गुणों का विकास हुआ है उनमें उन गुणों के प्राप्त करने के कारणों को खोजें, साथ में अपने अंदर कौन सी ऐसी कमियां हैं इस बात का भी पता लगाएं। जिस साधक कारणों को हमें अपनाएं और बाधक कारणों को परित्याग करें। अपने में आत्मविश्वास जागृत करना बहुत ही आवश्यक है। सिद्धियों के लिए मनोबल को बढ़ाना होगा, बिखरी हुई शक्ति को बटोर कर एकत्रित करना होगा। मनुष्य मात्र भूलों का भंडार है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा की हुई भूलों का अवलोकन करते रहना आवश्यक है। निरंतर सावधानी रखने से भूल करने से स्वभाव पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बहुत सी भूलें तो अज्ञानता और अन्य मनस्कता के कारण ही होती हैं, अतः अज्ञानता को दूर करने के लिए अपने मन को इधर उधर की बातों से हटाकर एक स्थान पर एकत्रित करना चाहिए। भूलें क्रमशः कम होती जाएगी और कार्य में सफलता मिलती जाएगी। अनुभवी व्यक्तियों से संपर्क करके समय समय पर मार्गदर्शन लेना भी जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने एक दो ऐसे शुभचिंतक तथा विचारशील व्यक्तियों को निश्चित कर लेना चाहिए, जो जब भी मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो आपको सही मार्गदर्शन कर सके। इसलिए प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में गुरु को अधिक महत्व दिया गया है और कहा गया है कि गुरु के बिना गति नहीं ज्ञान नहीं। गुणी व्यक्तियों का आदर करना, गुण ग्रहण की भावना रखना गुण प्रकटन या प्राप्ति का सच्चा व सहज उपाय है। हमने दोषों कमियों को प्रयत्नपूर्वक दूर करिए। स्वाध्याय व सत्संग सत्कार्य में पुरुषार्थ ही उन्नत बनने का राजमार्ग है।
1: गुण का विकास, आज आपने इस विषय पर आज का विचार कार्यक्रम में श्री अगरचंद नाहटा से उनके विचार सुने।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः 6:10 और 17 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं सिद्ध चौपाइयाँ। श्री रामचरितमानस से ली गई इन सिद्ध चौपाइयों को स्वर दिया है सुरेश वाडेकर, सीमा मिश्रा और साथियों ने।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से ली गई चौपाइयाँ, गायक स्वर सुरेश वाडेकर, सीमा मिश्रा और साथियों के थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न।

जाता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:30 होने को हैं। लीजिए अब सुनिए तुलसीकृत रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। संगीत सतीश भाटिया ने दिया है, गायक स्वर अनुराधा पौडवाल और साथियों के हैं।

पार्वती के मन में शिव जैसे बावले वर की कामना जगाने वाले नारद जी को जब हिमवान तथा उनकी पत्नी मैना के विषाद का समाचार मिला, तो उन्होंने पार्वती के पूर्व जन्म की कथा बताकर हिमवान दंपति को सांत्वना दी। शोकाकुल हिमवान तथा मैना को ये ज्ञात नहीं था कि भ्रमवश सीता का वेश धारण करने के कारण शिव ने सती का त्याग किया था तथा सती ने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया था। फिर उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और हजारों वर्षों की तपस्या करके शिव को पुनः वर रूप में पाया है। ये कथा सुनकर मैना, हिमवान, सभी स्त्री पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, समस्त नगर निवासी प्रसन्न हुए और बारातियों के स्वागत सत्कार में जुट गए। प्रस्तुत है जेवनार विवाह मंडप में निर्मित वेदी, ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं का आह्वान, उपस्थित नारी समुदाय के व्यंग्य विनोद का ये प्रसंग।

अभी आप सुन रहे थे तुलसीकृत रामचरित मानस गान का सस्वर पाठ, संगीत सतीश भाटिया ने दिया था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ देर बाद यानी प्रातः 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज आप श्री सत्यनारायण शर्मा से उनकी लघु वार्ता सुनेंगे, पश्चिमी राजस्थान में खजूर की खेती। प्रातः 6:50 पर आप सुनेंगे लोक भजन और प्रातः 7 बजे होगा कार्यक्रम सुप्रभात।

प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सौरभ कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर आज आप सुनेंगे श्री निर्मल राकावत से उनकी वार्ता हिंदी साहित्य का बदलता स्वरूप। प्रातः 8:45 पर आप सुनेंगे रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम की 8वीं कड़ी। श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित इस कार्यक्रम में वाचक स्वर होगा श्रीमती मधु शर्मा का। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की होगी और संयोजन करेंगे श्री अमित सिंह। हमारे श्रोता लोक संगीत सुन पाएंगे प्रातः 9:10 पर और एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे प्रातः 9:30 पर। प्रातः 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम नई फिल्मों से और पूर्वाह्न 11:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। मध्याह्न 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रमों का विवरण। 12:10 पर हमारे श्रोता सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। दिन में 12:40 पर और दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और दिन में 1:05 पर बहिने सुनेंगे अपना कार्यक्रम घर आंगन।

सांध्यकालीन सभा में संध्या 5:05 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में विविध विषयों पर जानकारी और फिल्म संगीत के अलावा आज आप सुनेंगे एक वार्ता, फुटबॉल खेल से बढ़कर एक जुनून। वार्ताकार होंगे श्री हितेंद्र सिंह। हमारे श्रोता कार्यक्रमों का विवरण सुनेंगे संध्या 5:55 पर और संध्या 6:05 पर हमारे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत संध्या 7 बजे और संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। रात्रि 8 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर आप सुन पाएंगे लोक संगीत और फिल्म संगीत आप सुनेंगे एक बार फिर से रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलें। रात्रि 10 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे

अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें।

किसान भया राम राम। आज आप बात करा हाँ अपने पश्चिमी राजस्थान सारू खेतीबाड़ी रे सागे सागे आप फल रो उत्पादन किया ले सका। खजूर एक इसो फलदार वृक्ष है जिको आप परंपरागत खेतीबाड़ी रे सागे ब्यू लंबे बगत ताई मुनाफो जिको है उत्पादन जिको है ले। खजूर जिको है शुष्क जलवायु में उगाउन वालों एक प्राचीनतम फलदार वृक्ष के मानव सभ्यता में सब पुराना जिको कृषि कार्य करने वालों काम हो भी फलान महीने एक फल है। और बतावे है कि भाई आपणो जिको पश्चिमी राजस्थान है जिकर में विशेष रूप जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जोधपुर ए जिका जिला है वो खजूर उत्पादन सारू एकदम किया करे के मुनाफसिब है। ईरो जिको जलवायु है वातावरण है आ अपने खजूर की खेती खातर उपयुक्त है। खजूर मथे सामान्यतः जिको तापक्रम और पालो जिको पड़े सियाड़े में बीरो असर जिको है होवे कोनी। और एर सागे सागे लवण सहन करने की क्षमता भी खजूर रे पौधे में घनी होया करे जिके रे सारू वही राज्य में काफ़ी बड़ो जिको पश्चिमी क्षेत्र है खजूर की खेती खातर प्रभावी रूप में उपयोग में ले सका। और इसो क्षेत्र जठ लवणीय भूमि ज़्यादा है या जठ जल निकास री पर्याप्त सुविधा कोनी या सिंचाई रे सारू लवणीय जल री उपलब्धता है बठे आप अन्य फसलों रे सागे जिका है बे उपयुक्त कोनी होबा जाग्या या वो पानी तो बठे आप खजूर की खेती जी के बा कर सका। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार रे प्रयासों और अपना जिका वैज्ञानिक है कृषि विशेषज्ञ है बिहारी मदद सू आप राजस्थान जिका किसान हाँ वह पारंपरिक खेती रे तौर तरीका रे सागे सागे आधुनिक कृषि रे युग में आप प्रवेश कर रहे हैं बीरे फलस्वरूप अपन राजस्थान में खजूरी खेती जी के ले रही हैं। खजूर खेती रे सागे सागे आप जैतून है जोजोबा है इं कला भी अपना वाणिज्यिक फसलों उत्पादन जो है वो ले सका। विशेष रूप जो पश्चिमी राजस्थान है अठेरे जी की सूक्ष्म और गर्म जलवायु जी की है व खजूरी खेती सारू एक तरह रो वरदान है। राजस्थान रो जो उद्यानिकी विभाग है वो विशेष रूप उत्तर पश्चिमी राजस्थान है शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में खजूरी खेती जो है बड़े पैमाने में बढ़ावा दे रही है। खजूर एक ऐसा पेड़ है जिको विभिन्न प्रकार की जलवायु में अच्छी तरह पनप जाया करे। खजूर रे फल ने अपना पूरी तरह पकने और परिपक्व होने दौरान लंबे बगत ताई आपने शुष्क गर्मी री जरूरत रिया करे और लंबे समय तक बादल छाए रहने या हल्की बूंदाबांदी ई फसल ने नुकसान जो है वो पहुँच सके। अब बात तो देखो आई कि भाई इसी जी की फसल है जिको आप लंबे बगत तक ले सका हाँ और आपने जिकी पश्चिमी राजस्थानी जलवायु है बाहर खातर मुनासिब है तो आपने इसी जी की फलदार वृक्ष है अपने जरूर लगाना चाहिए। अब बात करा भी खजूरी किस्म और बिहार उपयोगिता अनुसार आप किसी किसी फसल किस्म है जिकी आप चयन कर सका हाँ तो इनमें कई तरह जिकी किस्म जिकी है जानकार में बताया करे जहाँ बेही है हलावी है खलास है खुनेजी है सेवी है मेड जाहिदी खदरावी तो यहाँ के लिए जिकी है या पिंड खजूर बनाने सारू जिकी है मेडजुल जाहिदी खदरावी हलावी समरान जगलूल ए यहाँ के लिए किस्म जिकी है बे अपना कसीरा जानकार बताया करे। खजूरी बेहतरीन किस्म उगाउन सारू अपने राज्य सरकार जी की जोधपुर रमैने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला भी शुरुआत करी जिके रमैने विशेष किस्म जी के बारही खुनेजी खालास मेडजुल जामली ए यहाँ के लिए जी की किस्म है यहाँ रो काम यहाँ मथे करे है। और ये टिश्यू कल्चर तकनीकों खजूरी जी की खेती है भी यहाँ मथे किसान ने अनुदान भी जी को है अपन सरकार दिया करे। अब ये सारू भूमि और सारे तरह बात करें तो भाई खजूरी खेती सारू अपने लवणीय मर्द है जिकारो पीएच मान 8-9 तक हुए बठे भी आप सफलतापूर्वक इरी खजूरी जिकी है आप फसल जिकी है ले सका या खजूर जिका पेड़ जिका आप वृक्ष जिका है लगा सका। खजूर वृक्ष भूमि में सो 3-4% सहायता जिकी है सहन कर सके और भूमि में अधिक पीएच लवण और क्षार पौधारी वनस्पति वृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाले करे। बलुई दोमट मिट्टी जी के खेती खातर सबसे उपयुक्त रिया करे। भूमि में 2 मीटर गहरे तक

कंकड़ या पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट सख्त परत जी की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छी जल धारण क्षमता और जल निकासी समुचित व्यवस्था जी की अपने खजूरी खेती खातर करनी चाहिए और बाबिर खातर उत्तम रिया करें। पौधे लगाने रो जी को बगत है वह क्या भाई खजूर और वृक्ष जी को कम से कम 40 से 50% का अपने वर्ष तय फल दिया करें। तो ये सारू अपने एक हेक्टेयर में लगभग 156 पौधा अपना लगा सका और एक पौधे रे दूसरे पौधे रे बीच में मैंने 8 मीटर फासलो जी को है वो अपने रखना चाहिए। उचित फासलो रखने से कहीं है फल ने फलन खातर फैलन खातर आप पर्याप्त जी को है समुचित फैलाव खातर जगह जी की बचाई जाए करें और बीरे पौधा बीच में जी की है कृषि क्रिया जी की आप सुगमतापूर्वक जी की आप कर सका। सिंचाई प्रबंधन कर पा रख रखाव कर पा आप खजूरी जी की है फसल जी की है या खसूर खजूर फल राज्य का फलू अपान जी का उत्पादन चोखो ले सका।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। लीजिए अब सुनिए लोक भजन, गायक स्वर सोनी देवी का है।

सुप्रभात के सभी श्रोताओं को आरके सुतार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुबह सवेरे हम दिन की शुरुआत कैसे करते हैं इस पर निर्भर करता है कि हमारा पूरा दिन कैसे बीतेगा, और दिन की शुरुआत हमारे उठने से होती है। कई विकल्प हैं, हम उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखें, किस किस के फोन, कोई रात में आया है क्या, क्या कोई मैसेज देख लूँ मैं, कोई आए हों तो, कुछ रील्स चला लूँ, थोड़ी वीडियोस चला लूँ। सुबह से ही सूचनाओं और अव्यवस्था की एक बम्बार्डमेंट हमारे मन मस्तिष्क में शुरू हो जाती है। वो एक तरीका है ऐसा करने का। दूसरा तरीका कि आपने ये तय कर रखा है कि आप सुबह 8 बजे तक या 9 बजे तक फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाएंगे, और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम से आप शुरू करते हैं। आप नहाते हैं, पूजा करते हैं, घूमने जाते हैं, चिंतन करते हैं, कुछ नया लेखन करते हैं या पढ़ते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अब च्वाइस आपकी है, दोनों ही काम करने के लिए आपको कहीं से एनओसी नहीं लेनी, कहीं से अनुज्ञा प्रमाण पत्र नहीं लेना, परमिशन नहीं लेनी। अपनी जिंदगी की, अपनी मर्जी के मालिक आप खुद हैं। आपको तय करना है कि जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। अगर आप 2 घंटे तक सुबह सुबह जब सारी दुनिया सो रही है या बाकी सब समय का अपव्यय करने में लगी हुई है, तब आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो करने के लिए लोग 12 बजे दिन में बैठेंगे। जब लोग 12 बजे दिन शुरू करेंगे, तब तक आप अपना महत्वपूर्ण सारा कार्य निपटा चुके होंगे, और ये चॉइस आपकी अपनी है कि आपको क्या करना है। दरअसल जिंदगी जो है उसमें हम अगर खुद सीखें तो ज़िंदगी बहुत छोटी है। यदि हम ये तय कर लें कि हर बार जब भी हम गिरेंगे तब संभलेंगे, उससे सीखेंगे, इस तरह से ज़िंदगी को संवारते जाएंगे, तो ज़िंदगी वाकई बहुत छोटी है। होना तो ये चाहिए कि हमें दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। जो गलतियां दूसरे लोग कर चुके हैं वो गलतियां हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए। हमें अच्छे साहित्यकारों, अच्छे चिंतकों, अच्छे विद्वानों को सुनना, पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि उन लोगों ने जीवन में जो भी सीखा वो बिना समय बर्बाद किए सीधा हमें मिल जाए। आज आप देखें कि वैसे तो हर दिन किसी न किसी महान व्यक्तित्व का होता है जिनसे हम सीख सकते हैं, पर आज हम बात कर रहे हैं कि काजी नजरुल इस्लाम की। बंगाली साहित्य के आप महान कवि थे, लेखक।

थे, संगीतकार थे और स्वतंत्रता चेतना के प्रखर स्वर थे। उन्हें रिबेल पॉइट यानी कि विद्रोही कवि कहा जाता था क्योंकि उनकी रचनाओं में अन्याय, दमन और सांप्रदायिकता के विरुद्ध तीव्र आवाज दिखाई देती है। उनका जन्म 24 मई 1899 को चुरुलिया में हुआ था और देहांत उनका 29 अगस्त 1976 को ढाका में हुआ था। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि माना जाता है और विद्रोही उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। उन्होंने हजारों गीत रचे जिन्हें नजरुल नीति कहा जाता है। उनकी रचनाओं में हिंदू मुस्लिम एकता, मानवता और स्वतंत्रता के विचार प्रमुख थे। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति का भाव है, मनुष्य को अन्याय और बंधनों के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। लेकिन बात वही है कि ये जो मन है ये बिल्कुल वैसा है कि जिसने मन पे नियंत्रण पा लिया तो उसके लिए नियंत्रण पाने के लिए दुनिया में कुछ और बचता नहीं है। मन कभी इधर डोलता है, कभी उधर डोलता है। वो चाहे वैचारिक स्तर पे निर्णय लेना हो, चाहे व्यावहारिक स्तर पे निर्णय लेना हो, चाहे व्यक्तिगत स्तर पे निर्णय लेना हो, चाहे सामाजिक स्तर पे निर्णय लेना हो, लेकिन स्थिर मन होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी कला है। मन को स्थिर कैसे करें उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये एक बहुत ही खूबसूरत गीत कि मन कभी इधर डोले और कभी उधर डोले तो फिर होता क्या है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

तो श्रोताओं, बात कर रहे थे मन की। और ये मन जो डोलता है तो ये वैसा ही मामला है कि फिर जीवन भी डोलने लगता है। शरीर बाद में बीमार होता है, पहले मन बीमार होता है। जीवन में सफलताएं बाद में मिलती है, मन में पहले तय होती हैं। जीवन में विफलताएं बाद में सामने आती है, मन पहले हारता है। इसलिए कहते हैं कि मन के जीते जीते और मन के हारे हार। तो ये जो मन है, इसको साधना सूरज के सात घोड़ों को साधने जैसा है। भारतीय मनीषा कहती है कि पूर्व दिशा जो है वो आत्मबल की कारक है। अब आत्मबल की कारक पूर्व दिशा ही क्यों है? क्योंकि इधर सूर्योदय होता है और सूर्य जो है उनके घोड़ों पर, उनके रथ पर सात घोड़े सवार हैं। मतलब सात घोड़ों को साधना, विविध दिशाओं में भागते मन को नियंत्रित करना, और जो विविध दिशाओं में भागते मन को नियंत्रित कर ले, उन घोड़ों को नियंत्रित कर ले, तो फिर उसका आत्मबल तो बन ही जाएगा। जीवन में असंभव क्या रहेगा? तो हम कैसे करें? तो उसके लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान की आदत नियमित यदि हम डाल लेते हैं तो अद्भुत परिणाम जीवन में आ जाते हैं। और लोगों को आंखें बंद करके बैठने में बड़ा कष्ट होता है, एकांत से बड़ा डर लगता है, क्योंकि स्वभाव नहीं रहा। जब कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं बोर हो रहा हूँ, खाली बैठे क्या करूँ, तो आप समझ लीजिए कि उसे जीवन को कैसे जीना है ये कला किसी ने सिखाई नहीं। और ध्यान से कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन ध्यान को जीवन में उतारने की अनेक विधियां हैं। और बहुत बड़ी बड़ी विधियों की बात मैं नहीं करता, वो तो सब लोग जानते हैं या प्रयास करके सीख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी आदतों को भी यदि हम अपना सुधार लें जीवन में, तब भी बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो सकता है? तो ऐसा ये हो सकता है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमें कहा जाता है काम ध्यान से करो। काम ध्यान से करो मतलब वर्क विथ प्रिकॉशन, सावधानी से करने के लिए नहीं कहा जा रहा, जबकि हम ऐसा समझ लेते हैं। कहने का वास्तविक उद्देश्य होता है कि

वर्क विद फोकस, ध्यान केंद्रित करके कार्य करो। जैसे मैं यदि आपसे पूछूं कि आपने बहुत ध्यान से आखिरी बार पानी कब पिया था, तो आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान से पानी कोई पीता ही नहीं है। बस दिमाग में कुछ और चल रहा है और पानी लिया, गटगट कब खत्म हुआ पता भी नहीं चला, रवाना हो गए। ध्यान से पानी पीना, ध्यान से ब्रश करना, ध्यान से जूते पॉलिश करने का मतलब ये होता है कि बस, जैसे मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं, तो आप पानी को, गिलास को उठाते हैं, देखते हैं, अभी ध्यान और कहीं नहीं है सिवाय पानी के। और एक एक घूंट दर घूंट अंदर जा रहा है और आप अनुभव करते हैं कितने गहरे तक जा रहा है। इसे कहते हैं ध्यान से पानी पीना। जब पानी पी रहे हैं तो पानी पी रहे हैं, किसी और पे कुछ ध्यान नहीं है। तो जीवन में ये यदि आदत छोटी छोटी पड़ जाए, जैसे रोज, मतलब अपन सोचें रात भर में सब कुछ बदल जाए आते हैं तो संभव नहीं होता, थोड़ा व्यवहारिक होना चाहिए। लेकिन यदि आप संकल्प लेते हैं कि मैं पहले 15 दिन जो है केवल ध्यान से पानी पीऊँगा, फिर अगले 15 दिन मैं ध्यान से ब्रश करूँगा, फिर अगले 15 दिन मैं ध्यान से भोजन करूँगा, तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपके शरीर को छोटे छोटे काम बहुत ध्यान से करने की आदत पड़ जाएगी। और जब इस तरह से आपको करने का अभ्यास हो जाएगा, तो विचारों का विस्फोट अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, मन स्थिर रहना शुरू हो जाएगा, आपकी याददाश्त बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी, आप जीवन में बहुत अच्छी तरीके से अच्छे निर्णय ले पाएंगे, आप दूरदृष्टि के मालिक हो जाएंगे, चेहरे पर तेज आना शुरू हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास, प्रसन्नता इतना बढ़ जाएगा कि फिर मन अस्थिर नहीं होगा, आशंकाएं समाप्त होने लगेंगी, तो फिर बीमार भी नहीं होंगे, तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। पर यह सब होने के लिए पहली शर्त क्या है? मन को धीरज धरना आना चाहिए।

मन की बात चली तो मैं ये नहीं कहता कि मन में कोई तड़प नहीं होनी चाहिए, लेकिन मन में आशंकाएं हों तो ठीक नहीं है। मन में एक विश्वास पैदा हो तो अच्छी बात है, पर वो विश्वास भी अच्छे उद्देश्यों के लिए हो। तड़प भी होना बुरा नहीं है, पर वो तड़प भी अच्छे उद्देश्य के लिए हो। आस्तिक होना, धार्मिक बातें करना, ज्ञान की बातें करना, ज्ञान दूसरों को देना दुनिया में सबसे सरल काम है, लेकिन लोग जितना ज्ञान दुनिया में दूसरों को देते हैं उसमें से यदि 10% भी स्वयं पालन कर लें तो वो महापुरुष हो सकते हैं। आप कल्पना करें कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है। राजस्थान में माउंट आबू के पास में अचलगढ़ है। अचलगढ़ में पुराना किला था पहाड़ पर, और वहाँ एक स्थान पर छोटा सा स्थान है जिसे मीराबाई की झोंपड़ी कहते हैं। उसके पास में एक सरोवर बना हुआ है। कहते हैं कि मीराबाई जब भगवान कृष्ण की विरह में भजन कर रही थी तो मन इतना तड़फा कि जो आंसू निकले उससे ये सरोवर बन गया। आंसुओं से सरोवर बना या नहीं बना ये एक हो सकता है लोकोक्ति हो केवल, लेकिन कहने का भाव ये तो तय ही है कि भगवान की विरह में इतना तड़पना, इतना स्वयं को समर्पित कर देना, तभी तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए, तभी तो वो मीराबाई हो गई। उस दौर में जब स्त्री की स्वतंत्रता इतनी सहज नहीं थी, उस दौर में जब मीरा की सास ने यह कहा कि तुम ये सड़कों पे नाचते गाते घूम रही हो कृष्ण कृष्ण, इससे हमारे कुल की प्रतिष्ठा पर कलंक लग रहा है। लेकिन आप बताइए कि मीराबाई की सास को आज कौन जानता है? किसी को नाम भी नहीं पता, और जिसे कुल कलंकिनी कहा गया वो भक्त शिरोमणि बन गई, क्योंकि समर्पण पूर्ण निष्ठा के साथ संपूर्ण था।

तो मन यदि तड़पे अच्छे उद्देश्य के लिए, तो फिर जीवन में कभी व्यक्ति हारता नहीं है। फिर उसे लगता है कि उसका जीना सार्थक हुआ, फिर उसे विश्वास होता है कि जीवन चलने का नाम है। तब वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करता है, अपनी प्रतिस्पर्धा स्वयं से करता है, दूसरे से नहीं करता।

और श्रोताओं, मुझे भी चलना होगा क्योंकि समय के साथ चलना है। तो कल फिर मिलेंगे सुबह आज ही के समय। आर के सुतार को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए गुलजार का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध ये गीत। फिल्म का नाम है स्वयंवर और आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं।

अभी आपने यशुदास और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत सुना। फिल्म का नाम था त्रिशूल। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म बूंद जो बन गई मोती का ये गीत। स्वर मुकेश का है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम था प्रेम पर्वत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अंत में आइए सुनते हैं

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजे अब समाचार होंगे।
1: में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर

0: करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। DGCA ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
2: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
5: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी

0: या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

0: और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी।

0: एम्पायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड टू में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्ते ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg.

पुस्तक में कहा है कि साहित्य, कला और संगीत के बिना मनुष्य पशुवत है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। कवि या साहित्यकार द्वारा जो कुछ भी रचा जाता है उसकी विषय वस्तु, उस रचना का कलेवर उसे समाज से ही प्राप्त होता है। रचनाकार जो महसूसता है, जो भोगता है और वातावरण से जितना स्पंदित व भाव सम्मिलित होता है उसे ही वह कागज पर उकेरता है। आचार्य शुक्ल ने भी साहित्य के विषय में बताया है कि साहित्य समाज की चित्तवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। समाज की बदलती हुई चित्तवृत्तियाँ साहित्य में समन्वित होती है, प्रकट होती है। हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना जाता है। हालांकि सिद्ध साहित्य से प्रारंभ हिंदी के साहित्य के चिन्ह 8वीं सदी से सिद्धों की रचनाओं में देखने को मिल जाते हैं। उत्तर भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत भारत की सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां नष्ट होने लगती है। धर्म की स्थिति भी वितंडावाद के सहारे नजर आती है। इन परिस्थितियों में शासन व धर्म से दूर हो चुकी जनता के लिए बौद्ध सिद्धों की वाणियां व उनकी उलट बांसियां संजीवनी बूटी का कार्य करती है। साहित्य के प्रारंभिक 300 वर्षों में धार्मिकता, श्रृंगारिकता व वीर गाथात्मकता की प्रधान प्रवृत्तियां दृष्टिगत होती है। सिद्धों की वाम साधना की अतिरंजना की प्रतिक्रिया में नाथों का उद्भव होता है और 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य गोरखनाथ एक चमत्कारिक महान धार्मिक नेता के रूप में प्रकट होते हैं, जिनके नेतृत्व में सिद्धों की विभत्स साधना पर विराम लगता है और ईश्वर को घट के भीतर ढूंढने की निर्मल प्रवृत्ति का आविर्भाव होता है। जोई जोई पिंडे, सोई सोई ब्रह्मांडे का उद्घोष करते गौरख भारत को पुनः एकता के सूत्र में, धार्मिक एकता के सूत्र में आबद्ध करते नजर आते हैं। 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी के मध्य हिंदी साहित्य की भाषा अपभ्रंश के कुक्ष से निकलकर अपना प्रारंभिक स्वरूप प्राप्त करती है। प्रारंभिक काल में ही राज्याश्रित चारण भाट कवियों द्वारा अपने राजाओं की अतिशोक्तिपूर्ण वीरता व उनके प्रेम को प्रकट करता रासो साहित्य का उद्भव होता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहूँ तो इन रासो रचनाओं के चरित नायक साहित्य में देवताओं की तरह प्रस्तुत किए गए हैं। उनका एक कदम जब युद्ध भूमि पर पड़ता था तो भूमि कंपायमान हो जाती थी और दिन में अंधेरे या रात का सा वातावरण बन जाता था। इन चरित काव्यों से ही पृथ्वीराज राशो के रूप में हिंदी को प्रथम महाकाव्य व चंद्र बदाई के रूप में प्रथम महाकवि दाई के रूप में प्राप्त होते हैं। 7वीं सती से 14वीं सती तक राजस्थान के दक्षिणी भूभाग व गुजरात की भूमि पर विशुद्ध अपभ्रंश में जैन धार्मिक साहित्य भी ब्रह्मान रहता है, जिन्हें जैन कवियों द्वारा अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए सांप्रदायिक रंग में रंगकर प्रस्तुत किया गया। इन 300 वर्षों में मर्यादावादी प्रेम पर आधारित लोक प्रेम कथा ढोला मारूरा दूहा का सृजन होता है। वहीं मैथिली भाषा में विद्यापति का राधा कृष्ण काव्य पदावली के मधुर पदों के साथ समस्त पूर्वी भारत में धर्म ग्रंथ की भांति आमजन गाया करते थे। इसी काल में तूतीय हिंद, खड़ी बोली के प्रथम कवि, हिंदवी के मान, अमीर खुसरो अपने मनोरंजक व लोक साहित्य को सृजित कर आम जन में नवीन प्राणों का संचार करते प्रकट होते हैं। साहित्य का स्वरूप जनता की बदलती हुई अभिरुचियों का स्वरूप है। 14वीं शताब्दी तक भारत में इस्लाम अपने पैर फैला चुका था। इस्लाम की प्रतिक्रियावश इतिहासकार भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव इस्लाम के आने का मानते हैं, लेकिन हिंदुओं की स्वाभाविक धार्मिक आस्था भी इस साहित्य की उत्पत्ति का एक बड़ा कारण रही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहूँ तो जहाँ आदिकालीन साहित्य में मनुष्य को देवता के स्वरूप में सृजा गया, वहाँ भक्तिकाल में देवताओं को आम मनुष्य की भांति सुख दुख में विलीन बताया गया है। भक्तिकाल में कबीर विरहिणी के रूप में जिह्वा पर छालों व आंखों में झाइयों के साथ अपने राम से प्रेम करते हैं, वहीं झाई सी पद्मावती के अनिद्य सौंदर्य में ईश्वर के प्रति बिंब को प्राप्त करते हैं। सूर की गोपियों की हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण हैं, उन्हें तो हर कीमत पर कृष्ण की आकांक्षा है। वहीं तुलसी के राम धनु को धारण कर अधर्म के विनाश हेतु उद्यत दिखाई देते हैं। मीरा अपना सर्वस्व कृष्ण को समर्पित करती है, लोक लाज को त्याग कर कृष्ण को पतितुल्य मानती है। वहीं मियां रसखान कृष्ण के बाल रूप को निहारने व उनकी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए समस्त वैभव की सामग्री न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। तभी कहा गया है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। कबीर के राम गुणातीत व अनिर्वचनीय हैं, वहीं तुलसी

के राम शील शक्ति व सौंदर्य की निधि है, कोटिक मनोज लजावन हारे हैं। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव चाहे कैसे भी हुआ है, कबीर हिंदू मुस्लिम पाखंड का पर्दाफाश करते समाज सुधारक के रूप में नजर आते हैं। वहीं जायसी हिंदू धर्म की परंपराओं का खूबसूरत वर्णन करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता को प्रत्यक्ष करते प्रकट होते हैं। वहीं सूर तुलसी व अन्य वैष्णव भक्त कवि अपने सुंदर मधुर पदों, दोहा चौपाई व सवैयों से निराश हताश हिंदुस्तान में ऊर्जा, प्रेम व आशा का संचार करते व प्राण फूंकते दिखाई पड़ते हैं। भक्तिकालीन साहित्य ब्रज व अवधि में रचा गया। कृष्ण काव्य में सूरदास की साहित्य लहरी व नंददास कृत रस मंजरी से साहित्य एक नई दिशा की तरफ गमन करता है, जिसे सुदृढ़ पथ व आधार प्रदान करने के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। तब कवि प्रिया के सृजन के साथ भाखा कवि भव मंदमति केशव दास प्रकट होते हैं और साहित्य में रीति तत्व की प्रवृत्ति अपने चरम पर होती है। 1650 से 1850 के मध्य ब्रजभाषा के माधुर्य व लालित्य के साथ रीति काव्य का सृजन होता है, जिसमें केशव, भिखारी दास, चिंतामणि, दुलह आदि कवि अपने पांडित्य को प्रदर्शन करते रीति निरूपण कर रीतिबद्ध काव्य की सृजना करते हैं। वहीं भूषण जैसे रीतिबद्ध कवि हिंदू धर्म की रक्षार्थ वीरता दिखाने वाले आश्रयदाता राजा छत्रसाल व शिवाजी की वीरता की वास्तविक अभिव्यंजना कर बंदी बंधाई रीति की परिपाटी से भिन्न वीर रस की अभिव्यंजना कर रीतिकालीन राष्ट्र कवि की पदवी पर सुशोभित होते हैं। इसी काल में लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरो कवित बनावत कहकर रीतिबद्ध कवियों का उपहास उड़ाते घनानंद जब अपने विरह को कवित सवैयों में प्रकट करते हैं तो लगता है कि सच्चे प्रेम के पवित्र आंसू टपक टपक कर मलिनता के नामो निशान मिटाने को उत्सुक हैं। घनानंद, आलम, ठाकुर जैसे कवि अपने हृदय की स्वाभाविक अभिव्यंजनाओं को अकृत्रिम रूप में प्रकट कर एक पवित्र साहित्य संसार को पाठक के समक्ष प्रकट करते हैं। हिंदी साहित्य में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना के साथ साथ खड़ी बोली में गद्य का आविर्भाव होता है। लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र जैसे प्रारंभिक गद्य के उन्नायक जिन्होंने गद्य का प्रारंभिक स्वरूप स्थिर किया। तत्पश्चात हिंदी उर्दू के भाषाई विवाद को समाप्त कर वर्तमान खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को भारतेंदु स्थिर करते हैं। भारतेंदु जी साहित्य की बंदी बंधाई रूढ़ परिपाटी से हटकर नए नए विषयों की ओर साहित्य को प्रवृत्त करते हैं, इसीलिए भारतेंदु आधुनिक काल के जनक कहलाते हैं। इनके काल में राष्ट्रीयता व राजभक्ति दोनों का मिश्रित रूप साहित्य में उपस्थित होता है। वहीं तत्कालीन समसामयिक विषय विधवा विवाह, शराबबंदी जैसे विषय साहित्य की विषय वस्तु बनते दिखाई पड़ते हैं। पद्य और गद्य ब्रज और खड़ी बोली में सृजित हुआ। भाषा का द्वैध शासन था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का परिमार्जन किया व कवियों को खड़ी बोली में पद्य सृजन को प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मैथिली शरण गुप्त, हरिओद जैसे प्रभृति कवि खड़ी बोली में काव्य सृजन करने लगे और हरिओद द्वारा खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का सृजन हुआ। वहीं मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली में भारत भारती की रचना की, जो कि खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई। द्विवेदी जी के युग में इनके व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप मर्यादावादी व प्रबंध इतिवृत्तात्मक साहित्य का सृजन हुआ। 1900 ईस्वी के पश्चात कलमकार गद्य की विविध विधाएं सृजित करने लगे। अब प्रचुर परिमाण में कविताओं के साथ साथ कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध प्रभृति गद्य रचनाओं का प्रणयन होने लगा। 1916 ईस्वी में निराला ने जूही की कली की रचना कर कविता को छंदों के शासन से मुक्त किया। खुल गए छंद के बंद, अब कविता लय में पाठक के हृदय तंत्र को झंकृत करने लगी। स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विरोध में छायावादी कवि चतुष्टय ने व्यक्तिनिष्ठ सूक्ष्म साहित्य की सृजना की, जो कि राष्ट्रीयता की भावना से लबरेज था। राम की शक्ति पूजा जहां युवाओं को नैराश्य त्याग कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने में प्रवृत्त करती है, वहीं प्रसाद कृत कामायनी मानवतावाद की स्थापना करती है। 1920 से 1936 ईस्वी के मध्य ही छायावादी युग में सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी प्रभृति कवियों ने अपने साहित्य में राष्ट्रवाद की ज्योति को प्रज्वलित किया। गांधी के युग में मार्क्सवाद कहाँ ठहरता। 36 से 43 तक मार्क्सवादी काव्य का सृजन अवश्य हुआ, लेकिन गांधी के अहिंसक मूल्यों
व मध्यम वर्ग की उपेक्षा के कारण साहित्य का ये रूप लंबा न चल सका। तत्पश्चात अस्तित्ववादी विचारधारा से प्रभावित अज्ञेय ने नवीन

0: भाव नवीन विषय और उपमानों के साथ साहित्य में तार सप्तक का प्रकाशन कर आधुनिक संवेदना का सूत्रपात किया, लेकिन प्रयोगवादी साहित्य में भावनाओं का स्थान बौद्धिकता ने लिया। अतिशय यथार्थ बौद्धिकता व व्यक्तिकता की प्रवृत्ति से साहित्य पाठकों के हृदय में लोकप्रिय न हो पाया। प्रयोगवादी साहित्य का कटा छटा नवीनीकृत रूप नई कविता के रूप में जब सामने आया, ये रूप मध्यम वर्ग की कुंठाओं पीड़ाओं का खुला दस्तावेज रहा। धीरे धीरे साहित्य आधुनिक काल के विभिन्न संप्रतियों आधुनिकतावाद उत्तराधुनिकतावाद विडंबना इत्यादि संप्रतियों से संयुक्त हुआ और आज वर्तमान में आधुनिक साहित्य अब जीवन के विविध आयामों से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति मन से राष्ट्र के मन को प्रतिबिंबित करता आधुनिक साहित्य लोक मंगलकारी व उद्देश्यपूर्ण है। तुलसी के शब्दों में अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, कीर्ति भनीति भूति भलसोई सुर सरी सम सब कहित होई।
1: हिंदी साहित्य का बदलता स्वरूप। अभी आपने इस विषय पर श्री निर्मल राकावत से सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी ये वार्ता सुनी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से प्रसारित किया गया।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। आज सुनिए इस कार्यक्रम की 8वीं कड़ी। वाचक स्वर श्रीमती मधु शर्मा का है, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की है और कार्यक्रम का संयोजन किया है श्री अमित सिंह ने।
1: श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस अंक के सफर में हमने बीकानेर के मोहल्ला चूनग्रान के श्रोता मोहम्मद शाकिर की यादें और अनुभवों को शामिल किया है। आपकी आयु 62 वर्ष है, आप सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। चलिए आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं और सुनते हैं उन्होंने रेडियो को कब जाना, कब उनका आकाशवाणी से परिचय हुआ।
1: रेडियो का जो जन्म हुआ उसके बाद मैं जैसा याद करता हूँ, जब मैं 10-12 साल का था, जब से क्या है कि मुझे ये महसूस हुआ कि रेडियो एक सूचना का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और मेरे दादाजी का एक रेडियो था जो मेरे फादर पिताजी सुना करते थे, क्योंकि मेरे जन्म के पहले मेरे दादाजी का इंतकाल हो गया था, यानी कि अल्लाह को प्यारे हो गए थे, और वो रेडियो मेरे फादर सुना करते थे।
0: आकाशवाणी के पुराने कलाकारों और अधिकारियों का जिक्र भी आपने किया।
1: रेडियो के अंदर सारी न्यूज आती थी और गानों के प्रोग्राम आता था, जिसके अंदर के अलाउंसर चंचल हस्त थे और एक भटागर मैडम थी और भी कई लोग थे जो बड़े अच्छे अलाउंसर थे, और उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि हमें लगता था कि अरे इतने बज गए रेडियो सुनने में इस प्रोग्राम के लिए, अरे दो भी निकल गए रे, अब अगर दोबारा ये रिपीट हो जाए तो कितना अच्छा ले जाएगा, ये दो शब्द वो निकल गए वो, तो ऐसा टेस्ट था और इंटरेस्ट था वो।
0: समाचारों और विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में मोहम्मद शाकिर जी ने अपनी बात कहते हुए कहा कि अलग अलग भाषाओं में समाचारों का आना ज्यादा श्रोताओं को जोड़ता है।
1: और मुझे याद पड़ता है जब मैं बड़ा हुआ और जब से मैं कहे कि वो संभाला और समझदार हुआ, तो मुझे कहे कि रेडियो का महत्व पता चला। और रेडियो हम एक ही, हम छोटे परिवार के हैं तो हम एक कमरे में बैठ के रेडियो सुना करते थे, और ज़्यादा क्या है कि रेडियो में न्यूज़ सुना करते थे, और उसके साथ में गाने का प्रोग्राम आता था, मारवाड़ी गीत आते थे, और कई भाषाओं के अंदर के अलग अलग टाइम में न्यूज़ समाचार दिए जाते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हिंदी भाषा के अलावा सभी भाषाओं का ध्यान रखते हुए हिंदुस्तान के अंदर सभी भाषाओं के द्वारा हिंदी की न्यूज़ सूचना सुनाई जाती थी, जिससे जैसे संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, ताकि हर एक भाषा के लोगों को सूचना समाचार सुनने को मौका मिले। जिसको समझ में जो भाषा नहीं आती है, अगर वो एक भाषा सुनाई दी जाए तो दूसरी भाषा वाले को थोड़ा हिंदी समझ में नहीं आएगा, तो उस रेडियो की दूसरे वाले वंचित हो जाएंगे। लेकिन सरकार के अनुसार सब भाषाओं का ध्यान रखते हुए सरकार ने 3-4 जो भाषाएँ हैं जो बोली जाती है, जनरल भाषाएँ हैं, वो समाचार दिए जाते थे।
0: श्रोताओं, आप जानते हैं कि आकाशवाणी नाटकों का प्रसारण भी करता है, क्या कहा मोहम्मद शाकिर जी ने?
1: अपने नाटक देखते हैं साल भर में, हर साल क्या है कि 3-5 दिन नाटक होते हैं, उसी तरह रेडियो में क्या नाटक प्रसारण हुआ करता था, उन नाटक एक एक घंटा का नाटकों का प्रसारण हुआ करता था, और आदमी ऐसे देखते थे जैसे टीवी के अंदर महाभारत का और का जो युद्ध दिखाया जाता था, वैसे लोग क्या रेडियो के अंदर बैठ के देखते थे, और एक कमरे के अंदर सारे परिवार बैठते थे।
0: युद्ध के समय की चर्चा भी आपने की और कहा रेडियो सूचना का एक महत्वपूर्ण साधन था।
1: मुझे याद है कि मैं छोटा था जब 1977 के अंदर जब लड़ाई हुई थी, तो रेडियो एक महत्वपूर्ण साधन था समाचार का, और ये लोगों को रेडियो के द्वारा ही पता चलता था कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। जैसे नाल के अंदर बमबारी हुई, तो नाल का बमबारी के अंदर बम ब्लास्ट नहीं हुआ, करनी माता की कृपा से क्या बम ब्लास्ट नहीं हुआ, जमीन का रह गया और लोग बच गए कोलायत में आस पड़ोस, तो ये सारी चीज़ होती थी, तो लोग रात को शहर की नींद सोते थे, और हवाईजहाज चल रही है और ऐसा लगता था कि हवाईजहाज छत के ऊपर आ गई है, तो इतना डर लगता था, लेकिन रेडियो के माध्यम से ये पता चलता था, क्योंकि वाजपेयी इतना अच्छा समाचार बोलते थे, उनकी रेडियो के अंदर वो खुद समाचार देते थे कि हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, तो कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर नहीं आएगी, और फला शहर में ये हुआ लेकिन ऐसा हो गया, सेना ने ये किया, तो रेडियो के माध्यम से क्या है कि हम लोग क्या है कि न्यूज़ सुन के और चैन की नींद सोते थे, और रात को क्या है कि बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाता था, लेकिन रेडियो का सुनने का सरकार की तरफ से कोई मना नहीं था, क्योंकि रेडियो के अंदर एक बल्ब हुआ करता था

0: उस बल्ब से क्या है कि रेडियो क्या है कि गर्म होके वो रेडियो चलता था।
1: क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण भी रेडियो के द्वारा आप सुना करते थे। शाकिर जी ने इसके साथ किसानों की जानकारी होने की भी बात कही।
0: और रेडियो के बाद गांव में भी जगह जगह क्या है चौपालों पे क्या है लोग रेडियो लेके बैठते थे और लोग चर्चाएं करते थे रेडियो के खेल के बारे में। रेडियो के द्वारा खेल के जितने मैच होते थे वो क्या है कि लोग सुनते थे, खिलाड़ी खेल रहे हैं कर रहे हैं। और गांव में भी क्या है कि सारे समाचार आते थे। गांव में किसानों को रेडियो के द्वारा अनाज की मंडी के भाव बताए जाते थे कि आज मंडी में इतना भाव हुआ। एक दिन पहले मंडी का भाव तय होकर दूसरे दिन मंडी में क्या बाजार के अंदर वो रेट खुला जाता था। तो रेडियो के द्वारा क्या बाजार का बाजार चलता था। आप देखिए उस टाइम रेडियो एक ऐसा साधन था कि वो और कोई साधन नहीं था। ये टीवी और आज आया ना, फिर भी अभी भी ऐसी जो लोग बुजुर्ग लोग हैं पुराने लोग हैं वो आज भी रेडियो को क्या क्या कीमती मान।
1: गानों के बारे में क्या कहा पुराने श्रोता मोहम्मद शाकिर जी ने, सुनिए।
0: रेडियो के अंदर पुराने गाने आया करते थे। एक टाइम था जब शाम के टाइम क्या 5:05 पे पुराने गाने आया करते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि कहीं भी घर से बाहर होते ना तो हम 5 तक घर में घुस जाते कि भाई 5:05 पे गाना आने वाले हैं और हम गाने सुनते थे। और वो 5:05 लेके 5:40 तक गाने होते थे और 5:40 के बाद 5:45 पे क्या आजाद हो जाती थी। तो आज रेडियो जैसे ही क्या गाने बंद हुए रेडियो बंद करके हम लोग नमाज पढ़ने जाते थे, जाया करते थे।
1: श्रोताओं, आज हम भले ही मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से प्रोग्राम सुने परंतु शाकिर साहब रेडियो सेट पर ही कार्यक्रम सुनते हैं क्योंकि इनको रेडियो पर सुनने के फायदों की जानकारी है और रेडियो सेट के खराब होने पर क्या होता है ये भी बताया।
0: रेडियो का सुनने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आज जैसे अपन टीवी देखते हैं तो टीवी के अंदर के जो ट्यूब होती है पिक्चर ट्यूब होती है उसका क्या है अपन पता नहीं चलता है कि उसका नुकसान क्या है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप लगातार 2 टीवी देखते हो और टीवी के आगे क्या है मोबाइल रख देते हो तो उसके वाइब्रेशन होता है तो उससे टीवी की रह से पता चलता है कितना नुकसान होता है। लेकिन रेडियो जो है वो रेडियो किसी तरह से नुकसानदायक नहीं है शरीर के लिए, दिमाग के लिए नुकसानदायक नहीं है। और टीवी के अंदर तो क्या टीवी के अंदर जो पिक्चर ट्यूब होती है वो इलेक्ट्रॉनिक होती है और वेव किरणें निकलती है और टीवी इसके अंदर रेडियो के अंदर किसी तरह की कोई किरणें नहीं निकलती है और ना वो गर्म होता है। और कमरे के अंदर रख दो उसको और रेडियो के अंदर 4 होते थे तो उस टाइम के सेलों को भी बहुत बिक्री होती थी। सेल होते थे तो सेलों की बहुत बिक्री होती। आज क्या है कि अच्छा उस टाइम दुकानदार रेडियो को ठीक करा जाते थे तो भाई साहब रेडियो ठीक कर दो, कह नहीं भाई साहब टाइम नहीं है 2 लगेंगे, कह नहीं भाई साहब न्यूज़ सुननी है, पिताजी हमारा कहे कि हम तो बिना न्यूज़ कहने रहूँ को नहीं, रोटी भाया को नहीं, प्रोग्राम भाड़ो दिन रेडियो से चल रहे रात रेडियो बंद कर 8 सोऊँ तो रेडियो भाई साहब ठीक कर दो, पैसा कितना ही ले लेते। तो कई लोग ऐसे थे रेडियो का ऐसा शौक था कि लोग बैठ के बाप कह देता कि तू रेडियो ठीक करा के आएगा तो ही घर में आएगा, चाहे रात 10-7 दो। और उससे मोबाइल नहीं था फिर भी क्या बाप समझ जाते थे कि भैया बेटा रेडियो ठीक कराने गया तो दुकानदार से कहते थे उस टाइम रेडियो के जैसे 10-20 में रेडियो ठीक कर देते। और जो पुराने रेडियो थे उसके अंदर क्या है ज़्यादातर क्या है कि डोरी होती थी तो अपन जब क्या है कि स्विच ऑन करते हैं ना तो डोरी से क्या चलते थे जो उसके अंदर 6 हुआ करते थे। उसके अंदर एक आवाज़ खोलने का, एक आवाज़ धीरे करने का, एक स्टेशन चेंज करने का और एक और हुआ करता था वॉल्यूम का कम ज़्यादा करने का। तो वो कह गए डोरी के माध्यम से 6 चलते थे। अगर वो डोरी खुल गई या उतर गई तो रेडियो काम नहीं करता था और सारे वाल फ्री हो जाते थे। तो कई बार क्या करते थे कि हम रेडियो को पूरा पीछे खोल के और डोरी को लगा देते। कई बार क्या डोरी टूट जाती हमारे से बैठती नहीं तो अभी टीवी रेडियो को बंद करके दुकान के बाद जाते हैं भाई साहब डोरी टूट गई है तो डोरी क्या है 2 की लगा देता, वो 2 क्या है तो 5-10 वो लेता था डोरी लगाने के और डोरी के पैसे लेता था और हमें क्या है कि फटाफट आके रेडियो चला लेते थे। तो रेडियो का कहने का मतलब है कि आज भी क्या है कि मैं तो ये कहता हूँ कि रेडियो एक ऐसा माध्यम होना चाहिए युवा पीढ़ी के लिए, बुजुर्ग के लिए कि वो रेडियो को काम में लेवे, रेडियो सुने, गाने सुने।
1: रेडियो लाइसेंस के बारे में क्या कहा पुराने श्रोता मोहम्मद शाकिर जी ने,
0: जैसे अपने क्या है कि एक साइकिल अपने होती थी तो साइकिल पे क्या है कि टोकन नंबर होता था आगे लगाया जाता था और एक क्या एक पीछे के आगे पीछे बैरिटर लगाया जाता था लाल रंग का, इससे अंधेरे के अंदर क्या है कि साइकिल नजर आ जाए कि आदमी एक्सीडेंट हो जैसे आज गाड़ियों में लगाते हैं रोड के ऊपर। तो उसी तरह था कि रेडियो को भी एक लाइसेंस लिया जाता था, वो 20 के द्वारा अप्लाई करके लिया जाता था और मकान मालिक होता

0: कोई का, खाली एक सिंपल क्या है कागज पे लिख के और मैं मेरे पास रेडी है फला मॉडल का ये है और उस पर क्या वो ऐसे दे दिया जाता था, वो एक दो एक रुपये की फीस होती थी, तो उस टाइम रेडियो का भी लाइसेंस होता था, फिर भी लोग इस प्रक्रिया को काम में करते हुए कानून की पालना करते हुए लाइसेंस लेते थे और रेडियो क्या है क्या सुनते थे।
1: और बीकानेर में लगने वाली रेडियो प्रदर्शनी का भी जिक्र किया।
0: 3 महीने पहले एक एग्जीबिशन हुई थी नागी भंडार, उसके अंदर क्या है एक कोई माथुर है दिनेश माथुर जी, तो मेरे पास अखबार में मैं पढ़ता हूँ तो अखबार में क्या मेरे को शौक है जैसे कि मुशायरा होता है या ये एग्जीबिशन लगती है लाइब्रेरी की एग्जीबिशन लगती है। बीकानेर में जो रफीक है गायक कलाकार वो क्या है पुराने पिक्चरों के पोस्टर लगाता है, तो मैं वहाँ पे क्या है कि माथुर साहब की रेडियो के कलेक्शन देखने गया वहाँ, तो मेरे को बहुत पुराने पुराने मेरे जन्म से पहले के अलग अलग मॉडल के रेडियो मिले, तो मैंने क्या किया कि उस मोबाइल पे फोटो खींचे और मोबाइल पर फोटो खींच के मैंने क्या है कि मेरे परिवार वालों को जो आज के युवा लोग हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको रेडियो का पता नहीं था कि उनको एक सिंपल था कि रेडियो है मर्फी का। जब मैंने वो करीब 150-200 रेडियो थे वहाँ पे और हर सन के थे वो, तो मैंने वो उसके फोटो खींच के मैंने सभी लोगों के मेरे रिश्तेदारों को डाला, तो उन्होंने कहा तू ये कलेक्शन कहाँ से लेके आया, तो मैंने कहा मैं वहाँ गया था और मैं मोबाइल से फोटो खींच के लेके आया और सबको भेजा, तो सबको बड़ा आश्चर्य और उन्होंने कहा यार हमने तो ये एग्जीबिशन देखने से वंचित रह गए, हमको देखना चाहिए था। तो मैंने कहा है कि रेडियो का प्रचार प्रसार भी कर दिया इससे कि भाई रेडियो का कितना उपयोग था और रेडियो कब से चल रहा था।
1: रेडियो की मौसम सूचना का असर क्या होता था यह भी बताया शाकिर जी ने।
0: मेरे जन्म से नहीं मेरे दादाजी के जन्म से ताता आप लगाइए कि रेडियो का कम से कम 100 साल नहीं कई 100 सालों से रेडियो का जन्म भी सूचना का गानों का माध्यम ही रेडियो था, दूर संचार का रेडियो ही एक साधन था जो दूर संचार था, बाकी आज के जो साधन ना ये शारीरिक दिमाग के रूप से नुकसानदायक है, ये यांत्रिक के रूप से नुकसानदायक है, लेकिन रेडियो का मैं जब वो रेडियो के जो इतने फोटो भेजे ना तो लोगों ने कहा कि यार ये तो बहुत बढ़िया रेडियो, तो लोगों के रेडियो के प्रति और उत्साह बढ़ेगा।
1: और अब सुनिए मोहम्मद शाकिर का संदेश जो आपके लिए है।
0: यही संदेश देता हूँ कि रेडियो सस्ता टिकाऊ मजबूत बिना नुकसानदायक एक यांत्रिक साधन है, उसको सुनिए और दूरसंचार का जो है साधन है उसको काम में लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और रेडियो के अंदर टीवी के अंदर तो क्या है कि देखिए आप के एडवर्टाइजमेंट आते हैं और ऐसे फजूल प्रोग्राम आते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को गुमराह किया जाता है, हर तरह से उसका दिमाग भटकाया जाता है। रेडियो के अंदर सरकार का ही डिपार्टमेंट है तो जो भी न्यूज रेडियो में जो भी प्रोग्राम होते हैं पहले वो सरकारी तंत्र के द्वारा चेक करके उनको अच्छी तरह प्रोग्राम करके, और रेडियो के अंदर अलग अलग आदमी की अलग अलग काम है, रेडियो के अंदर प्रोग्रामर अलग बैठते हैं, उनका काम प्रोग्राम करना है।
1: सुना श्रोताओं आपने कैसी कैसी रोचक यादें और अनुभव बताए हमारे श्रोता मोहम्मद शाकिर जी ने, इसी प्रकार हम आपके लिए लाते रहेंगे पुराने श्रोताओं की यादें अनुभव और नई नई ऐतिहासिक जानकारियाँ। इस कार्यक्रम के संयोजक थे श्री अमित सिंह, प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, वाचक स्वर था मधु शर्मा का। अब श्रोताओं समय का इशारा हो गया है कि हम आपसे विदा लें, अब आज्ञा दीजिए अगले मंगलवार तक, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारो चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के तहत आज सीमा प्रहरियों से संवाद करेंगे, सरहदी सुरक्षा पर भी मंथन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे और राज्य में

0: चल रही भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के दूसरे दिन आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बीएसएफ की सांचू चौकी जाएंगे। वे सुरक्षा बलों के जवानों से बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। बीएसएफ सेक्टर में होने वाली इस समन्वय बैठक में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए होने वाली मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए कार्य योजना पर विचार किया जाएगा। इससे पहले गृहमंत्री के बीकानेर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नाल हवाई अड्डे पर उनकी अगुवानी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारमण ने कल मुंबई में एक कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के इकोसिस्टम को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कच्चे तेल के अलावा उर्वरक की कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
1: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 196,000 सेल हुए हैं।
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले की जांच में ये बात सामने आई है कि सभी प्रभावित प्रसूताओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था जिसमें ऑक्सीटोसिन नदारद पाया गया है। जांच में इस इंजेक्शन के सैंपल फेल पाए गए। इस बीच कल सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्रिप चढ़ाने के बाद कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। इन्हें कोटा रेफर किया गया जहां उनकी स्थिति अब सामान्य है। सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर ने बताया कि प्रभावित रोगियों को दिए गए आईवी फ्लूड को जांच के लिए भेजा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ये पोर्टल 15 दिनों के लिए खुला रहेगा। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली में कहा कि योजना के तहत रेल और हवाई मार्ग से 56,000 बुजुर्गों को निशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इनमें 50,000 ट्रेन से और 6,000 श्रद्धालु हवाई मार्ग से यात्रा करेंगे।
2: मैं आम जन से अपील करना चाहूंगा कि जो पोर्टल खुलेगा, 15 दिन के लिए पोर्टल खुला रहेगा, आप देवस्थान विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। ऑनलाइन आवेदन आप करोगे तो ही आप उसमें जैसे नोटरी में आ सकोगे, इसलिए इस जो 15 दिन का समय मिल रहा है उसमें आप ऑनलाइन आवेदन करें, जिससे आपको देश भर के बड़े तीर्थ स्थान है, चाहे वो रामेश्वरम है।

0: मदुरई है, चाहे जगन्नाथपुरी है, चाहे कामाख्या देवी आसाम है, महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, सोमनाथ मंदिर है, अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, नेपाल पशुपतिनाथ है, ये सारे इनको दर्शन करने का आपको अवसर मिल सके, इसलिए आम जन से निवेदन है कि वो ऑनलाइन आवेदन जरूर करें।
1: जोधपुर में कल भोगी शैल परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। ये मारवाड़ की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में खास मानी जाती है और क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को लोगों से जोड़ने का काम करती है। सामाजिक समरसता और लोक आस्था की इस परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। झुंझुनू में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ग्राम विकास अधिकारी को 8.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। झुंझुनू में एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार पूनिया ने बताया कि आरोपी ने परिवादी से ये राशि आवासीय भूखंड पर मेडिकल स्टोर चलाने पर कार्रवाई का भय दिखा कर ली थी। आरोपी ने कन्वर्जन प्रक्रिया के नाम पर परिवादी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। राज्य में जल संरक्षण और आधुनिक खेती की दिशा में करौली जिला नई पहचान बना रहा है। जिले में किसानों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को अपनाकर पानी की बचत का संदेश दिया है, साथ ही उत्पादकता बढ़ाकर मिसाल कायम की है। इस संबंध में और जानकारी हमारे करौली संवाददाता से।
2: नीति आयोग की मार्च माह की रिपोर्ट में जिले ने 114% प्रगति दर्ज की है। जिले को 816 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला था, जबकि 935 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई। योजना के तहत एससी एसटी लघु सीमांत और महिला किसानों को 75% तथा सामान्य किसानों को 70% अनुदान दिया जा रहा है। ड्रिप और फव्वारा सिंचाई से पानी की बचत के साथ साथ खेती की दक्षता भी बढ़ी है, जिससे किसान आधुनिक खेती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बांके वैली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व से नए शावकों के आगमन की खबर है। ताल वृक्ष रेंज में बाघिन ST22 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही सरिस्का में अब बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। इनमें 11 बाघ, 17 बाघिने और 26 शावक शामिल है। नए शावकों की नजर आने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए क्षेत्र के जल स्रोतों और वाटर पॉइंट्स को नियमित रूप से भरवाया जा रहा है। प्रदेश में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। रात के समय गर्म हवाओं का प्रकोप लोगों को बेहाल कर रहा है। कल 8 शहरों में दिन का पारा 44 और 13 शहरों में रात का पारा 30 डिग्री के पार मापा गया। 45.6 डिग्री के साथ सीकर का दिन और 33.3 डिग्री के साथ हनुमानगढ़ के संगरिया की रात सबसे गर्म रही। मौसम विभाग के अनुसार सीकर के अलावा चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर में भी पारा 45 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। वहीं करौली, दौसा, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, फलौदी, कोटा, अलवर और जयपुर में रात का पारा 30 डिग्री के पार रिकॉर्ड हुआ। राज्य में अगले 3 दिन अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के तहत आज सीमा प्रहरियों से संवाद करेंगे। सरहदी सुरक्षा पर भी मंथन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। और राज्य में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। इस समय प्रातः के 9:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं सीमा मिश्रा की आवाज में ये लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं संगीतान दुमान की आवाज में ये लोकगीत।

लोक संगीत हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 9:30 हुए हैं। ये जो आप सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर।

0: स्थान जिज्ञासा विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, वो लिखते हैं।
0: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार, आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
1: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
0: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
1: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
0: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
0: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
0: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
1: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
0: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
1: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
0: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
1: बिल्कुल सही, जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
0: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
1: जी,
0: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
1: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
0: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
1: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
1: जी
0: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
1: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
0: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
1: जी
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
0: जी,
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही है, इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं
1: जी,
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से

0: अलग है
1: जी।
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी।
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: Oh yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh wow. So here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: So children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?
4: Yes!
2: All right. So now, what will we do?
4: We will hum and we will sing along.
2: Yes, we will hum and sing along.
4: Yay!

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,

0: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
1: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
2: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
3: बिल्कुल ठीक
2: है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
4: वीर जोरावर की
5: जय।
4: वीर जोरावर की
5: जय।
4: जय जयरापुर, जय भारत।
5: जय जयरापुर, जय भारत।
1: राजा जोरावर सिंह। हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जयरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
6: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
1: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
6: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
7: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
2: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
7: जी।
2: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
7: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
2: बिल्कुल,
7: आपके सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
2: जी मंत्री जी।
7: जी महाराज।
1: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जयरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
8: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
9: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
2: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
9: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
2: देखिए निजाम साहब।
9: जी फरमाए।

0: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
1: जी।
0: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
1: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
0: जी।
1: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
2: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वही निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
4: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
2: ए सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
5: बिल्कुल।
2: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
5: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
2: लेकिन जरा होशियारी से।
5: जो हुकुम सरकार।

0: चारों तरफ से घिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest।
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
1: छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सारल जंग, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
3: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: चलो इसको, चलो
1: मुझे, छोड़ो मुझे।
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से

0: पापा कहने लगे,
1: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी, और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
2: अप्पा ये नहीं हो सकता।
1: देखो देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
2: ये नामुमकिन है।
1: व्हाई?
2: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
1: तो तुम नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
2: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
1: Actually, you are a fool.
3: जोरावर की यह बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
4: काला पानी की सजा?
3: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
4: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे,
3: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
2: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
4: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया, और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
5: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: अब आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग। सुबह के ठीक 10 बजे हैं। मेरा वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर, और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलबोलो चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।
2: दी, ये देख कैसे।
3: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
4: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: I know na,
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
3: आई एम हियर।
4: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर रखना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: होता है।
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
2: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

बोला है आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनिए राजेश रोशन का संगीतबद्ध और इंद्रवर का लिखा गीत। फिल्म का नाम है करण अर्जुन। आवाज़ें कुमार शर्मा, अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की है।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारो चैनल से। आप समय मिला सकते हैं अब ये दिन के 10:31:52। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं पंकज उदास और साथियों की आवाज में ये गीत आनंद बख्शी ने

आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज में एक गीत, फिल्म का नाम था आशिकी। कुमार शानू और साथियों को सुनिए, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

फिल्म दीवाना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारू चैनल से बोल रहे हैं पूर्व के 11 बजे। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल मारू चैनल है। श्रोताओं, ये सुनते हैं बोले बिसरे गीत।

से गीत आप आकाशवाणी बीकानेर की धुले मेरू चैनल से सुन रहे हैं। ये आवाज़ थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था सच्चा झूठा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

Ah, tá, menino.

अब कह लग जाए कैया मैं तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझे नीयत कर ली।

हमार भर कोई तो हमर ना आ।

0: अपना है रब रूहे या दुनिया में तेरी आह पकड़ ली मैंने छूटे नियत कर ली यारी छूटे ना चाहे घर छूटे या माथा लग जाए हथकड़िया
1: अक्सर
0: रब रूठे या दुनिया अक्सर मारे

मंगेशकर मुकेश और साथियों को हमने आपने सुना फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में भूले वैसे गीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारो चैनल से सुन रहे हैं।

सुने महेंद्र कपूर को। शुद्ध फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के डोरीमारो चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं मुकेश को फिल्म पहचान में।

अबुल फरमान या अपने सुनिए गीत। फिल्म दो कलियां से था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मुकेश की आवाज में है। फिल्म का नाम

संगठित आशा भोसले मोहम्मद रफी और साथियों की फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के डोलमारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम श्री 420।

0: फिल्म श्री 420 में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम बोले मिश्रे गीत यहीं संपन्न करने की सुधीर व्यास को इजाजत दीजिए। नमस्कार, हम आकाशवाणी बीकानेर के डोरी नेहरू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 12 बजे को है। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और

0: सहायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये दूरभाषी चैनल है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का

हमारी इसी समय में दिन में 12:40 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, दिन में 1:05 पर बहनें सुनेगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। आज के इस कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी चर्चा, संगीत में रुचि कैसे रखें, साथ ही सुनेंगे टेलरिंग और बुनाई की आधुनिक स्वरूप, किसानों की समस्याओं का समाधान, साथ ही सुनेंगे घर परिवार से संबंधित रोचक जानकारियां। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हमारी दूसरी सभा में शाम 5:05 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज के इस कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज की बात, विषय रहेगा पर्यटन का बढ़ता चलन, साथ ही सुनेंगे वार्ता, फुटबॉल खेल से बढ़कर एक जुनून, वार्ताकार होंगे श्री हितेंद्र सिंह, प्रस्तुति होगी श्री रेवत राम लेखा की, संयोजक होंगे श्री अमित सिंह। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

के लिए कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत शाम 7 बजे से। आज के इस कार्यक्रम में ग्रामीण श्रोता सुनेंगे सामूहिक चर्चा बाजार भाव और कृषि एवं पशुपालन से संबंधित रोचक जानकारियां और राजस्थानी लोकगीत। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 7:45 बजे और फिल्म संगीत रात 8 बजे से। लोक संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:30 बजे और सुगम संगीत और गजलें रात 9:30 बजे।

सहयोग के पत्रों पर आधारित फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे रात 10 बजे से। आज का ये कार्यक्रम पेश करेंगे जय प्रकाश राजपुरोहित। समय याद रखिएगा रात 10 बजे से।

हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण हम आकाशवाणी बीकानेर के ढूंढमारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 12:10 होने को है। थोड़ी देर में जयपुर से रिले होगा सिंधी कार्यक्रम।

0: हाजिर आयूं खणी अवां जो पंहिंजो सिंधी प्रोग्राम अॼु मां महेश कुमार कृष्णाणी पेश आहियां तव्हां सां गॾु खणी प्रोग्राम अदबी मैगज़ीन महिराण त सामिन अचो सभ खां अवल ॿुधूं था वार्ता जंहिंजो उनवान आहे सिंधी अदब में सिंधी ज़िंदगी वार्ताकार आहिनि प्रोफेसर हासो दादलाणी
1: साहित्य अदबी ज़बान जो लफ़्ज़ आहे जंहिंजी लफ़्ज़ी माना आहे फज़ीलत या शनाख़त हक़ीक़त में साहित्य जो अमली दायरो तमामु वसीह आहे तवारीख़ी फ़िलसूफ़ी विज्ञान समाजशास्त्र कुदरत इंसान जे अंदरियुनि हालतुनि ऐं अंदरियुनि अवस्थाउनि बाबति जेकी इज़हार या बयानु कयो वञे थो सो सभु साहित्य में शुमार कयो थो समुझणु घुरिजे कविताऊं कहाणियूं नाविल नाटक मज़मून या ॿियूं भिन भिन लिखणियूं ई रुगो साहित्य जा अंग न आहिनि जीअं आम तौर सम्झो या मञियो वेंदो आहे इन करे थोरे में ईअं चइजे त जेकी कुझु शब्द रूप में आहे सो सभु साहित्य में आहे अदब जो इंसान जी ज़िंदगीअ सां गहरो नातो आहे अदब इंसानी समाज जो आइनो आहे जीअं आईने में असीं पंहिंजी शिकिल चिटीअ रीत ॾिसी सघूं था तीअं कंहिं बि दौर जो साहित्य पढ़ण सां असांखे उन ज़माने जी सूरत माण्हुनि जी रहणी करणी रीतियुनि रस्मुनि जी चिटी तस्वीर ॾिसण में अचे थी हिन दुनिया में माहौल सां वाबस्ती रखण सां ई ज़िंदगीअ जो तसवुरु इंसान में नज़र अचे थो समाज इंसान जे माहौल जी पैदाइश आहे ऐं हर इंसान जे ज़िंदगीअ जो मदार माहौल ऐं समाज सां आहे माहौल ऐं समाज इंसान जे ज़िंदगीअ जी परवरिश कनि था ऐं हुन जे कानूननि ऐं उसूलनि जी सिखिया

था, हिन खे तहज़ीब ऐं इख़लाक खां वाक़िफ़ कनि था। ज़िंदगी ऐं अदब जो चोली दामन जो संबंध आहे। जीअं चयो वियो आहे त अदब लेखक जे ज़िंदगीअ जे आज़मूदनि जो पैगाम आहे। सुकरात पिण चयो आहे त इल्मु अदब ज़िंदगीअ जो नक़ुल आहे। सिंधी अदब में सिंधी ज़िंदगी केतिरे क़दुरु समायल आहे। अदब जी हर शाख में, चाहे सिंधी कविता हुजे, कहाणी, नावेल ऐं नाटक वग़ैरह हुजनि, सभिनी में सिंधी ज़िंदगीअ खे बखूबी चित्रित कयो वियो आहे। देश

अदब जी हर शाख में चाहे सिंधी कविता हुजे कहानी नावल ऐं नाटक वगैरह हुजन सभिनी में सिंधी जिंदगीअ खे बखूबी चित्रित कयो वियो आहे देश जे दुखदाई विरहाङे बैदि सिंधी सिंध छॾे पंहिंजे वतन जा वण छॾे उतां लॾे भारत जे जुदा जुदा प्रांतनि में अची रहिया सिंधियुनि खे पंहिंजी जनम भूमिअ जी कुर्बानी ॾिसणी पई भारत में अची अटे लटे अजय जी मुश्किलात खे मुंहुं ॾियण में लॻी विया उन वक़्त जे काव्य खे ॾिसूं त उहो उन वक़्त जे सिंधियुनि जे जीवन जो आइनो आहे सिंधियुनि जे जीवन मां साबित थिए थो त सिंधी शांती प्रिय आहिनि विरहाङे खां पोइ सिंधी शायरीअ जा मौज़ूअ पंहिंजे वतन जी सिक नरवासी कैंपुनि जी ज़िंदगी रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ जे समाजी माली मिसालनि सां मुक़ाबिलो वग़ैरह हुआ अज़ीज़ जो शहर आहे वतन जे बाग़ जा विसरी न बुलबुल खे तराना विया पिया जे दूर गुल जे ऐं फ्री जा आशियाना विया नरवासी कैंपुनि जी ज़िंदगीअ में श्री परसराम ज़िया हक़ीक़ी सिंधी ज़िंदगीअ जो बयानु कयो आहे पिटे थी पोव माउ यारहीं वारो पीर पुजंदे लाल साईं का उबती हणंदे कैंपुनि में आणे फिटो कयाई ॾेई अटे जो पाउ पिटे थी पोव माउ अहिड़ीअ तरह सिंध जे सिरताज शाइर शाह लतीफ़ जे शायरीअ में बि सिंधी ज़िंदगीअ जो अक्स मिले थो जीअं सुर सारंग में शाह साहिब वणजारनि ऐं वणजारियुनि जे ज़िंदगीअ जो अक्स चिटियो आहे सिंधी कहाणीअ में सिंधी ज़िंदगी न सिर्फ़ दुनिया जे अदब में पर सिंधी अदब में सिंधी कहाणीअ ख़ातिरख्वाह तरक़ी कई आहे हर ॿोलीअ में कहाणियुनि जी शुरूआति दंद कथाउनि सां थींदी आहे जे ॾाॾियूं नानियूं माउर ऐं मासियूं बालकनि खे राति जो सुम्हारण खां अॻु बरज़बान ॿुधाईंदियूं हुयूं उन्हनि कहाणियुनि मार्फत ॿारनि में विंदुर ऐं इख़लाक़ी सिख्या मिलंदी हुई इन खां सवाइ कहाणियुनि में सिंधी ज़िंदगीअ जो अक्स हिन तरह ॾिसण में मिलंदो विंदुर ऐं रीझ कहाणीअ में घोट जो विरलापी बैत आहे अमारी अमा मां वञा माड़ीअ ॾे जीजारी जीजा मां वञा माड़ीअ ॾे अहिड़ियुनि कहाणियुनि मार्फत ॿारनि खे सिंधी ज़िंदगी ऐं चीदी सिंधी ॿोलीअ बाबति ॼाण मिले थी सुधातुरे कुदातुरे जी ॻाल्हि वह ऐं विले जी कहाणीअ मां बि सिंधी ज़िंदगीअ जो हूबहू चित्रण नज़र अचे थो विरहाङे खां पोइ तरक़ी पसंद साहित्य जी धारा में केतिरा ई लेखक अदब भराए ज़िंदगीअ वारे उसूल जा क़ाइल आहिनि कीरत बाबाणीअ जूं कहाणियूं सिधियूं संवाटियूं सुलझियल हूंदियूं आहिनि संदसि कहाणियुनि में किरदारनि जी सीरत निगारी मनोवैज्ञानिक नमूने हूंदी आहे संदसि चुनू ऐं मुन्नी बहितरीन मनछेद वारी कहाणी आहे मोहन कल्पना जे कहाणियुनि में बि अदब ज़िंदगीअ लाइ वारो उसूल मौजूदु आहे अॼु जी नई सिंधी कहाणीअ में लेखकनि ख़ासि करे विचे तबिके जे शहरी जीवन जा चित्र वधीक पेश कया आहिनि ईश्वर चंद्र जे कहाणियुनि में इंसानी ज़िंदगीअ माली हालतुनि जो ज़िक्र बखूबी कयलु आहे नावलनि में सिंधी ज़िंदगी गोबिंद माली जंहिंखे नावल सम्राट चयो वियो आहे संदसि नावलनि में हूबहू सिंधी ज़िंदगीअ जो चिट चिटियलु आहे पखीअरा वलर खां विछड़िया ॾेही परॾेही थिया इश्क नाहे रांदि देसी सेण कजन वग़ैरह नावलनि में समूरी सिंधी ज़िंदगी समायल आहे इश्क नाहे रांदि नावल में मालीअ कंहिं किरदार जो वाता चयो आहे जंहिं सिंधीअ शाह साहिब जा थोरा घणा बैत यादि न कया सो पाण खे सिंधी चवण जो हक़दार न आहे हिन नावल में सिंध जे ॻोठाणे माहौल ऐं ॻोठाणनि जे ज़िंदगीअ जो सुठो चिट चिटियलु आहे शाह साहिब जी मुख्य सुरमी मारूईअ जो उमदो ऐं फनाइतो चिट चिटियलु आहे ॾेही परॾेही थिया नावल में सिंधियुनि जूं उणायूं ॾेखारियल आहिनि हिन नावल में सिंधी भगत जो पिणु उमदो ऐं सुठो चित्र चितियलु आहे देसी सेण कजन नावल जो किरदारु जीवण सिंधी आहे जो सिंधी मुहाणी महबूबा खे सुहिणी मेहार जी कथा ॿुधाए थो शांती इहो किसो ॿुधी मंत्र मुग्ध थी वञे थी शरम बुटी नावल में सिंध जे ॻोठ जी कहाणी आहे हिन समूरे नावल में सिंधी जीवत जो बखूबी चित्रण कयो वियो आहे प्रोफेसर राम पंजवाणी जो नावल धीअर न ॼमन ख़ासि करे सिंधियुनि में ॾेती लेतीअ जे रवाज़ ते लिखियलु आहे प्रोफेसर पंजवाणी जे लिखणीअ में सिंधी इस्तिलाह ऐं पहाका भरपूर आहिनि जिन में पिणु सिंधी

0: जीवन जो उलड़ो नजर अचे तो जेके असांजे सिंधी भाषा जा गहना पिण आहिनि। श्री हरि मोटवाणी जा नावल अबो ऐं अजो पिण सिंधी जीवन सिंधी माहौल सां भरियल आहिनि। ही नावल पढ़ण सां सिंधी किरदारनि जो जीवन चिटीअ तरह हर आम इंसान समझी सघे थो। सुंदरी उत्तम चंदाणीअ जो नावल किरंदड़ दीवारूं पिण सिंधी विचोले दर्जे जे कुटुंब जे किसनि ते ॿधल कहाणी आहे। विरहाङे खां अॻु जे पुराणनि नावलनि खे ॾिसंदासीं त लालचंद जो चोथियो चंड सिंधियुनि जे पुराणियुनि रीतियुनि रस्मुनि अंधविश्वासनि कुरीतियुनि खे चिटीअ तरह हिन नावल में ॾेखारियल आहे। विषय ऐं कला जे लिहाज़ खां सिंधी नावलनि में सामाजिक मिसैला सिंध जी यादि आध्यात्मिक विषय वग़ैरह खयल आहिनि। सिंधी नाटकनि ऐं एकांकियुनि में बि सिंधी जीवन श्री मिर्ज़ा कलीच बेग ॾेखारियो आहे, जंहिं शेक्सपियर जे केतिरनि ई नाटकनि खे सिंधीअ में तर्जुमो करे हूबहू सिंधी चित्र चिटियो आहे। सिंधी एकांकी नाटकनि जा मुख्य विषय कैंपुनि में सिंधियुनि जी दुखी ज़िंदगी, सिंध जी सार, सिंधी लोक कहाणियूं, क़ौमी भावना, राष्ट्रीय मिसैला, अंतरजातीय शादियूं ऐं प्यार जा मिसैला वग़ैरह बखूबी ॾेखारियल आहिनि। सिंधी मज़मून ऐं सिंधी जीवन सिंधी अदब जे क्षेत्र में सिंधी मज़मून ख़ासि करे कोड़ोमल चंदनमल खिलनाणी 1862 में ज़नानी तइलीम जे मिसैले ते पको पहु नाले वॾो मज़मून लिखियईं, जंहिंमें ख़ासि करे चैन दीवारुनि में रहंदड़ सिंधी ज़ालुनि खे सिख्या ॾियण ते ज़ोर ॾिनो अथसि। हिन खां सवाइ प्रोफेसर लाल सिंह अजवाणी, तीर्थ वसन, जगत आडवाणीअ बि सिंधीअ जे अलॻि अलॻि विषयनि ते अलॻि अलॻि मौज़ूअनि ते बहितरीन मज़मून लिखिया आहिनि, जिन मां सिंधी जीवन जी साफ़ झलक नज़र अचे थी। प्रोफेसर राम पंजवाणी जो मज़मून सिंधी लोक कला, जंहिंमें सिंधियुनि जे अलॻि अलॻि लोक कथाउनि जो सुहिणे नमूने बयानु कयल आहे। अदब जे इन्हनि सिंफुनि खां सवाइ सिंधी लोक अदब, जंहिंमें सिंधी लोक चवणियूं पिणु शामिल आहिनि, जिन में सिंधियत ऐं सिंधी जो अक्स बखूबी नज़र अचे थो।
1: समीन हींअर बि वार्ता ॿुधी रहिया हुआ। हाणे ॿुधूं था डॉक्टर गायत्रीअ जी लिखियल हीअ कहाणी, जंहिंजो उनवान आहे ख़्वाहिश।
2: शोभा शोभा पुठियां खां ईंदड़ आवाज़, शोभा जे तेज़ीअ सां वधंदड़ पेरनि ते ओचितो ब्रेक लॻाए छॾिया हुआ। पुठियां उरी ॾिठई त विजय आंटी हुई, सहकंदी कंभंदी अची हुन जे भर में अची बीठी। किथे पई डुकंदी वञी शोभा, कीअं आई? घर में सभई कीअं आहिनि? तुंहिंजी त शादी थी वई हुई न, अञा ताईं ट्यूशन्स पढ़ाईंदी आई छा? विजया आंटीअ जा सुवाल ख़तमु थियण ते ई न पिया आया। अरे अरे, थोरो साहु त पटियो आंटी, ठीकु आहियां। ऐं ॾिसो न, बिल्कुलु चाक चङी भली तव्हांजे साम्हूं बीठी आहियां। रहियो सुवाल तव्हांजे बाक़ी बचियल सुवालनि जो, त घर अचो न कॾहिं। घर उहो ई आहे, पुरानो वारो। हींअर त मूंखे देरि पई थिए, ट्यूशन्स पढ़ण वारा ॿार इंतज़ारु कंदा हूंदा। 8:35 वारी लोकल ट्रेन पकड़नी आहे। चवंदे शोभा स्टेशन ॾांहुं डुक खणी पाती। प्लेटफॉर्म ते शोभा ऐं ट्रेन गॾो गॾु अची पहुता, ऐं शोभा ॼण त हवा में उॾामंदे दॿे अंदरि पेर रखियो। किस्मत सां सीट बि मिली वियसि। सीट जे पुश्त ते मथो टेकींदे शोभा जो मन विजया आंटीअ जे सुवालनि जा जवाब ॻोल्हींदो किथे माज़ीअ में वञी पहुतो। घणा साल अॻु विजया आंटी संदन पाड़े में रहंदी हुई। जॾहिं उहे शादी करे आई, तॾहिं शोभा अञा स्कूल में पढ़ंदी हुई। केतिरो न सुठो लॻो हो नंढरी शोभा खे विजया आंटीअ जे शादीअ जो फंक्शन ऐं कुंवार जे वेस में विजया आंटीअ जो घड़ी घड़ी लज में लाल थियण ॾिसी। तॾहिं नंढरी शोभा जे मन में हिकु ख़्वाहिश जन्म वरितो, जंहिं ते संदसि चप चुरिया हुआ। हिकिड़े ॾींहुं मां बि ईअं ई कुंवार बणजंदसि। टिन भेनरुनि ऐं हिकिड़े भाउ में शोभा सभिनीनि खां वॾी हुई, सभिनी जी लाडली। नानीअ जा ॼण हिन में प्राण वसंदा हुआ। हमेशह लाइ अखियूं ॿुटण खां अॻु हुन बांद्रा वारे फ्लैट जी वसियत शोभा जे नाले करे छॾी हुई। शोभा जी माउ बि संदसि ॾाॾी अम्मा जी लाडली नूंहं हुई, सिकी लधी पिणु, जंहिं नूंहं बणजी घर में दाख़िल थियण

खां पोइ कॾहिं बि खारी फिकीअ ते को आवाज़ न खयो। निराणनि खे हमेशह सगिन भेनरुनि वांगुरु समुझई ऐं ससु सहुरे जी बि ख़ूब सेवा कयई। ससु सहुरे जे जीअरे ई ॿिनि निराणनि जी शादी ख़ूब धूमधाम सां पंहिंजी हैसियत खां वधीक ॾेई कराई। हाणे हिकु निराण ॿी बि हुअसि शादीअ लाइक़। सहुरो पंहिंजे वक़्त ते धणीअ दर रवाना थियो। संदसि मुड़ुस यानी शोभा जे पिता खे ख़बर नाहे कहिड़ी अची बीमारी लॻी जो बिस्तरो पीछो ई न पियो छॾेसि। पढ़ंदड़ ॿार, मुड़ुस जी लाइलाज बीमारी, छातीअ ते वेठल जवान निराण ऐं ॿुढी ससु, वक़्तु ॼण ॻरो थी पियो हो। हिन ख़राब वक़्त में रिश्तेदारनि बि इहो सोचे त किथे का घुर न सहणी पवे, पहिरीं मिलणु घटि कयो ऐं पोइ बंदी करे छॾियऊं। तॾहिं संदसि कुंवारी निराण लाजूअ पंहिंजी प्यारी भाभीअ जी मदद ख़ातिर घर में ई ट्यूशन सेंटर खोले ॿारनि खे पढ़ाइणु शुरू करे छॾियो। ॼण त हिन घर लाइ ट्यूशन पढ़ाइण जी परंपरा शुरू कई हुई। हिते शोभा जॾहिं बीए जो इम्तिहान पास कयो त संदसि नंढपण जे सुपने, कंहिंजी कुंवार बणजण जे सुपने, संदसि मन जे दर खे खटकायो। पर घर जी हालति ॾिसी पंहिंजे मन खे आथत ॾींदे नानीअ जे ॾिनल फ्लैट में ॿियो ट्यूशन सेंटर खोले ॿारनि खे पढ़ाइण जो फ़ैसिलो कयई। वक़्तु पंहिंजी रफ़्तार में अञा मस पहुतो ई हुओ त ओचितो शोभा जो पीउ परलोक रवाना थियो। पहिरीं मुड़ुसु ऐं वरी पुट जी मौत ॾाॾीअ जे साउ खे असुल ॻरो बणाए छॾियो। पुट जे खाली थियल बिस्तरे जो साथ अहिड़ो त पकड़ियई जो हिकु ॾींहुं घर जो मोह छॾे मुड़ुस ऐं पुट जे रस्ते ते ईश्वर जे घर लाइ रवानी थी। पर वञण खां अॻु पंहिंजी नुंहुं खां धीउ लाजूअ जे सुठे आईंदे जो वचन वठणु न भुली। गुज़रंदड़ ॾींहनि साण लाजूअ जी जवानी बि ॿुढापे जी वाट ते कदम रखी चुकी हुई। रिश्ता हुआ जो घर जी मुफ़लिसी ॾिसी अॻु में ई हिबकंदा हुआ, जे वरी ईंदा बि हुआ त लाजूअ लाइ न पर शोभा लाइ। शोभा जो मन टुपा ॾियणु लॻंदो हो त नंढपण जो ख़्वाबु बसि इजो ई पूरो थियणो आहे। पर संदसि माउ भला ससरे ॾिनल वचन भुलाए निराण बदिरां धीअ खे परणाइण जी हिमाकत कीअं थी करे सघी। ऐं जॾहिं जॾहिं शोभा लाइ आयल रिश्ते खे माणस मोटाईंदी हुई, तॾहिं तॾहिं शोभा जे मन जो को न को तार टुटी पवंदो हो। शोभा हैरानीअ सां माउ जी शिकिल ते निगाह विझी मनी मन इहो सोचींदी हुई त छा माउ खे पंहिंजे जवान धीअ जो ज़रो बि ख़्यालु न आहे, काई चिंता न आहे। माउ त पंहिंजे ॿार जे मन खे पढ़ण में क़ाबिल हूंदी आहे, पोइ भला मुंहिंजी माउ जी इहा क़ाबिलियत किथे हली वई आहे। उहा हीअ ॻाल्हि छो नथी सम्झी सघे त लाजू बुआ जी शादी करण जी उमिरि कॾहिं को पार पहुची चुकी आहे। हाणे त हुनजी शादी थियणु या न थियणु जेको मायने ई न बचियो आहे। ऐं हिते मां हुनजी धीअ पंहिंजी ख़्वाहिशुनि जी अग्नीअ में जली रही आहियां, उन जो छा थींदो। हूअं त इहो बि नथी सोचे त धीअ जे लाइ आयल रिश्तनि खे मना कंदे कंदे इहो ख़्वाहिशुनि जो दौर बि गुज़री वेंदो, रिश्ता मायूस थी वेंदा ऐं शोभा बि नेठि पंहिंजी पुफीअ जे वक़्त ते अची बीह रहंदी। हाणे हूअ ढकियल दॿियल लफ़्ज़नि में माउ जे ख़िलाफ़त बि करणु लॻी हुई। पर संदसि माउ ते को बि असरु न पिए पियो। हुन जे मथे ते त हिकु ई भूत सुवार हो, निराण जे फर्ज़ खां आज़ादु थियण जो भूत। ऐं हिकिड़े ॾींहुं माउ जी कोशिशूं कामयाबु थियूं। लाजूअ जी शादी हिकु सुठे सभागे घर में कंहिं वॾी उमिरि जे शख़्स सां कराई वई। ऐं माउ जी हिन कामयाबु कोशिश हेठि ॼण शोभा जे अॼु जी चिता में आग लॻी वई। हिन शादीअ में घर जी तमामु जमाउनि सां गॾु ॿाहिरि जो ॿियो कर्ज़ बि चढ़ी वियो। घर जी हालति ऐं कर्ज़ जे ॿोझ हेठि शोभा जी कुंवार बणजण जी ख़्वाहिश रोई ॾिनो। ऐं नतीजो शोभा खे आयल ज़बरदस्त हार्ट अटैक। कंहिं नमूने शोभा जी ज़िंदगीअ खे त बचायो वियो, पर हुन जी सुपने, हुन जी ख़्वाहिश खे मुर्दा थियण खां केर बि न बचाए सघियो। वक़्तु पंहिंजी रफ़्तार सां गुज़रंदो रहियो। वरी हुन घर में शोभा जी शादीअ जी का बि ॻाल्हि न हली। ऐं हिकिड़े ॾींहुं संदसि माउ बि मालिक वटि रवानी थी। पर अखियूं ॿूटण खां पहिरीं हुन वटि को बि अहिड़ो शख़्स न हो जंहिंखां हूअ पंहिंजी धीअ शोभा जे सुठे आईंदे लाइ वाइदो वठी सघे हा। माज़ीअ में ॿुधल शोभा जे सोच जो

0: सिलसिलो टुटो, बांद्रा अची चुको हो, जिते हो नानीअ जो फ्लैट, शोभा ऐं हुन जी भेनरुनि भाउ जी कर्मस्थली। हुन जा भाउ भेनर बि हाणे वॾा थी पढ़ाई पूरी करे भेण जो साथ ॾेई रहिया आहिनि, घर संभालण में ट्यूशन ज़रिए, ऐं भेण जी ज़िंदगी जे फ़ैसिले में बि साथ ॾियण जो पाण सां ई वाइदो कयो अथऊं, कॾहिं बि शादी न करण जे फ़ैसिले सां। भला जिते संदन माउ जहिड़ी भेण जे ख़्वाहिशनि जी चिता जली हुई, उते शादीअ जो दिल वॼणु हू गवारा कीअं थे करे सघिया।
1: सामेन, हींअर हामी कहाणी ॿुधी रहिया हुआ जंहिंजो अनुवान हो ख़्वाहिश। अचो हाणे ॿुधूं था कमला बख़्तियानीअ जी हीअ काव्य रचना।

सुख सांपाले दुख ने के छाती अला तो बचड़ल के सुख सांपाले दुख ने के।

ओले बच्चड़न ते मेरे जी मूरत ततो में समाया बच्चड़न।

कया के सान गाल रियो बुद्धा।

पहाड़ हिन उनवान ते अवी हींअर काव्य रचना ॿुधी रहिया हुआ कमला भक्तियाणी जी सामाइन इन कविता पाठ सां गॾु ई असांजे अॼु जे प्रोग्राम जो वक़्तु इते ई पूरो थो थिए वरी अवां सां गॾिजाणी थींदी परीहं ईंदड़ विस्पत ॾींहुं जो 12 लॻे 10 मिंटनि ते तेसीं ताईं महेश कुमार कृष्णाणीअ खे ॾींदा इजाज़त नमस्कार

आकाशवाणी बीकानेर का ये बोलेरो चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत मुकेश की आवाज में, फिल्म अनाड़ी से।

थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था प्रिया का घर। श्रोतमाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम यकीन।

फिल्म सरस्वती चंद्र में अभी आपने सुनी लता मंगेशकर को, आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म आरजू में।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। दिन के 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में जयपुर से रिलीज होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर स्थित सांचू सीमा चौकी पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। श्री शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को भी सीमावर्ती क्षेत्रों को समर्पित किया। इसके जरिए भारत पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के गांवों में शिक्षा, सड़क, बिजली और रोजगार सहित बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के तहत बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के गांवों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ रहे। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, बीएसएफ डीजी प्रवीण कुमार, आईबी चीफ तपन डेका और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। गृहमंत्री बीकानेर में बीएसएफ मुख्यालय पर सीमा सुरक्षा पर मंथन करेंगे। इस समन्वय बैठक में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के उच्चाधिकारी तथा बीएसएफ के अधिकारी शामिल होंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। डॉ जयशंकर ने जोर दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक विकास और स्थिरता का प्रेरक बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि समुद्र से संबंधित मामलों में सहयोग करने वाले लोकतांत्रिक देशों और बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में क्वाड देशों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए कूटनीतिक विश्वास बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक अवसरों तथा विकल्पों को प्रोत्साहित करने के साथ ही आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। विदेश मंत्रियों की ये बैठक वैश्विक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया संकट के समय में हुई है। भारत ने क्वाड समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में ये बैठक आयोजित की। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से देश में बीमारियों की रोकथाम से जुड़ी सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन देन है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज और 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। इस बीच 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अनेक स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

0: बोहरा समाज की ओर से आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर अजमेर में शिवाजी पार्क स्थित बोहरा मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा की गई। इसके बाद सबने देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गौरतलब है कि मुख्य रूप से बकरीद का पर्व 28 मई को मनाया जाएगा। राज्य में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। दिन में सूरज की तेज तपिश लोगों को बेहाल कर रही है, वहीं रात में भी गर्म हवाओं का असर देखा जा रहा है। कोटा में अधिकतम तापमान कल 45 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं चित्तौड़गढ़, चूरू, करौली, दौसा और झुंझुनू में रात भर गर्म हवाओं का प्रकोप रहा। हनुमानगढ़ और अलवर में रात का तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राजधानी जयपुर में दिन का पारा 43.6 डिग्री तक पहुंच गया। दोपहर में सड़कों पर पानी के छिड़काव से लोगों को राहत देने की कोशिश की गई। लू और उमस के कारण पर्यटन स्थल भी सूने नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कल शाम से मौसम में हल्का बदलाव होने का पूर्वानुमान बताया है। उत्तर पूर्वी जिलों में 28 मई से आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, वहीं हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। वहीं कल मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और विजेता टीम क्वालिफायर टू में पहुंचेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये दूरदर्शन चैनल है। दिन के 1:05 हुए हैं। मैंने सुना कि अपना कार्यक्रम घर आंगन आज का ये कार्यक्रम पेश कर रही हैं खुशबू हर्ष और रामा छंगाणी।

0: घर आंगन सुनने वाली मारी प्यारी सी फूटरी सी और चौकी सी सखिया में मार रंग मचंगानी और
1: मैं खुशबू हर्षा
0: गना गना राम राम सा खुशबू आप आज ये दिन भी मोटी और मेहताऊ जी बात अगर बात करा तो अबार तो प्रत्येक गली में नुक्कड़ में घर परिवार रमाई ने एक ही आवाज सुनी जाए राधे गोविंद कृष्ण गोविंद यानी कि अधिक मास री
1: सही कह रहे हो रमा बहन कि अधिक मास में करोड़ों दान पुण्य धर्म रो आपने और अपारे परिवार ने चौकड़ो होर प्रोर मिलिया करे है
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो खुशबू और देखो कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर तीन साल रमाई ने आम वालो और अधिक मास जिके ने पुरुषोत्तम मास भी कहा करा हाँ और अपनी आध्यात्मिक बुद्धि और भगवान विष्णु की उपासना रे खातर बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी होया करे
1: और देखो नी यहाँ पर बहना है नी बेबी जरूर ही ये अधिक मास रो व्रत है उपवास है और जिका भगवान भजन है या बेबी है बेबी करता हुएला और बहने साथ साथ है मैं थाने एक बात कहना चाहूँ बहना की आपरे शरीर भी विशेष ध्यान रखे क्योंकि गर्मी है ज्यादा और आप जब व्रत और करा ने तो अपारे शरीर ने कही है कि भाई ज्यादा पौष्टिक आहार भी जरूरत पड़िया करे है
0: बिल्कुल खुशबू एकदम सही कह दिया हो और जी है कि देखो अब आप बात करी संगीत री संध्या री और संगीत संध्या रे जठे नाम आवे और बठे लुगाया री बात नहीं हुए तो देखो आप बात तो अधूरी लागे नी और सुरीली आवाज रे मायने संगीत सुनो यानी कि भगवान सु आपनो सीधो सीधो संबंध हो जाणो
1: सही है रमा बहन की संगीत है जी की एक साधना है
0: बिल्कुल
1: आज रोज को अपारो कार्यक्रम है वो भी सुर ताल राजस्थानी संगीत री मिठास रेवनाड़ो है कार्यक्रम रो हर गीत आपने अपनी माटी री खुशबू प्रेम और लोक संस्कृति सु जोड़े है
0: साची बात है खुशबू बहन की संगीत री लोक गीता री तो बात ही अलग होया करे और आपा काम करता करता थक जावा और तनाव में हुआ

0: सही है रमाबेन की संगीत है जिकी बा भाषा है जिकी शब्दार बिना भी दिल तक पहुंच जावे है। संगीत आपनी भावनाओं ने भी प्रभावित करे है। जब आपा खुश हुआ तो आपारो मन करे कि आपा संगीत सुना और थोड़ा सा नाच भी ला। इन सारू ही तनाव सु भी जिंदगी में संगीत सु आपारो जुको है नी वो लगाव जरूरी हुआ करे तनाव है जुको दूर हो जाया करे ताकि आपा फिर सु टाबर बन प्रार जीवन रो आनंद ले सका। हाँ
1: एकदम सही बात कह रही हो खुशबू। और देखो नी कि संगीत हर किरी जीवन रमाइन बहुत महत्वपूर्ण हुआ कर
0: देखो इनरे साथे साथे संगीत रे साथे साथे आपा एक आभी बात ध्यान रखा कि मौसम भी देखो
1: हाँ, खराब है।
0: कणी गर्मी आपा ने गर्मी है तो कणी कणी आपा ज्यादा ठंडो पानी तो देखा थोने भी बिसु कही है कि खांसी हो रहे तो मैं आई बात कहनी चाहूं कि आपरे शरीरो भी ध्यान रखो।
1: और जिया कि देखो भजन संध्या री संगीत री बात हो ही रही है और सर्दी जुकाम भी था तो कल रात्रि बेड़ा रमाइने अधिक मास ने देखते हुए मैं एक दो भजन भी गा लिया तो इन सारू घड़ो थोड़ो सो पानो खराब हो गयो।
0: तो इनरे साथे ही अपा बैना ने सुनावा एक चोखो सो गीतड़लो
1: बिल्कुल।

0: पदारो बना हर दे रे पदारो बना कमी डरी गाजन लादा बता मुझो किशनियो हजारी दुनिया
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: करना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का।

0: खुशबू, आज रे दौर में खाली दिन भर भागने दौड़ने पार कोनी पड़े।
1: सही बात है,
0: बल्कि जितो आपा दिन भर रहे मायने कमाई है, बीरे मायने आपा कितो बचा रहे हैं और भी एक तरह की अपनी कमाई ही होया कर।
1: बिल्कुल रमा बहन, और देखो कि अपा लोग ने तो बचत रो कहने की जरूरत भी कोनी पड़े है।
0: सही बात,
1: क्योंकि एक सफल गृहिणी बाई है जी की घर परिवार माय बचत रो ध्यान रख प्रारंभिक सगला काम निकाल लेवे है।
0: हाँ बेना, और देखो मनखारो काम तो कमांड होया करे और भी कमाई रे माया ही एक गृहिणी बजट संभालने सारू छोटी छोटी बचत कर प्रार परिवार रे भविष्य ने सुरक्षित कर सके है।
1: सही बात है, बिया भी जिया किराना और घरेलू खर्चा में समझदारी, डाकघरी छोटी छोटी योजना और सरकारी बचत स्कीम में निवेश कर प्रार खुद ने आत्मनिर्भर भी बना सके है।
0: और देखो बेना, बचत रा कई तरीका भी होया करे, जिया की आपा सेल और छूट भरपूर फायदा उठावा, और भी अलावा खुशबू थोक रमाई में अगर आपा खरीदारी करा तो निश्चित रूप से आपा बचत रमाई में सारो लगा सका। और देखो बेना, अधिकतर जी की चीजें होया करे आपा अगर घर पर ही बनावा नहीं तो इनसे भी आपा घर में बचत कर सका। और इधर अलावा बेना अपने रसोई की बगिया है जठे आपा थोड़ी मोड़ी सब्जियां उगा सका, जैसे कि हरी मिर्च है, धनिया है, मौसमी सब्जियां है, ये सब उगार पर भी आपा बचत में सारो लगा सका। और इनके अलावा खुशबू कई योजना भी है जिकारो फायदो आपा उठार पर अपनी बचत में थोड़ी सी बढ़ा सका।
1: देखो रमा बहन, थे बार बात करी खरीदारी, तो मैं थाने एक बात बतानी चाहूँ कि भाई खरीदारी में मायने थोड़ी सी सावधानी रखनी जरूरी है, क्योंकि कई बार कई हुए कि

0: मैं भी हूँ और मारी बहना भी है, बे सैल और छूट रे चक्कर है मायने बे सामान भी ले आवे जिका बिहारे काम में भी हुआ कोने। भाई आप यहाँ सोचा कि भाई बाद में काम आ जैसे तो भाई आप बिहार ने खरीद लेवा इस गई है कि घर में जगह भी आप रही है जिकी उजावे और बे सामान कद काम आवे व्यापार ने ठा भी
1: अनावश्यक सामान खरीद लेवा
0: क्योंकि रमा बेन आवश्यकता और फिजूल खर्ची में फर्क होया करे है। तो अपने आ ध्यान भी रखनी है कि सेल और छूट रो है जिको फायदो उठाना है ना कि आपने नुकसान हो जावे। और भी देखो जिकी योजना है जो सुकन्या समृद्धि योजना है, डाकघर है जो डिपॉजिट योजना है, महिला सम्मान बचत पत्र योजना है, लखपति दीदी योजना है, इनमें भी आपने पूरा पूरा जानकारी भी हुए जेने आप लाभ ले सका। तो ई योजना भी आपने जानकारी होनी जरूरी है।
1: बिल्कुल खुशबू। और इंद्र सागे सागे एक और खासो महत्व उपाय भी है कि आप साइलेंट सेविंग यानी कि गूगल पे द्वारा भी आप रुपया लुकार राख पर भी बचत कर सका। हाँ। और इरे मायने तन ध्यान है आप महिला मा माहिर
0: सही
1: और
0: बात है।
1: जी अगर कोई महिला हाथरी चत्तर है कारी हाथरो हुनर राखे है तो वे सिलाई है कढ़ाई है या टिफिन सर्विस है या ब्यूटी पार्लर जेड़ा कहीं भी आपका काम है बयाने रफ्तार देर पर भी बचत रहे मायने आप हिस्सेदारी जोड़
0: सके है। और इन्हें साथ ही साथ रमा बहन एक बात और है कि भाई आप तो देखो बचत करा ही। हाँ
1: इन्हें
0: साथ ही साथ अपन एक बात और करनी है कि आप अपारे टाबरा रे मायने भी आप बचत री
1: आदत
0: जरूर डाला और बाबी शुरू शुरू ही बिया ने भी समझावा कि भाई आवश्यकता और फिजूल खर्ची में बहुत ज्यादा फर्क होया करे है। अपने जिकी काम ली चीज है बातों अपने खरीदनी भी है बीमे भी यहाँ को नहीं की भाई अपने बचत करनी है तो आप चीज है जिकी खरीदा नहीं तो बाबी चीज खरीदनी है और जिकी चीज आपने नहीं चाहिए बापा ने नहीं खरीदनी है।
1: और आज रे टाबरा ने तो बिल्कुल यानी कि विशेष रूप से बातें समझानी बहुत ही जरूरी है। तो खुशबू बहन अपने कार्यक्रम रे मायने जिकी बातें भी आगे चलती रही पर आओ पहला सुनावा
0: बहना ने चोखो सो की
1: बिल्कुल

0: बेना आपा महिलावारे जीवन रे मायने सबसे ज्यादा भावनात्मक मानसिक और शारीरिक बदलाव रो दौर होया करे किशोरावस्था में। और देखो खुशबू आपने सबने ध्यान है कि आपने दादी नानी और आपने माँ किन सारू आपने इन अवस्था रे मायने संभाले हो और आज बारी है आपने कि आपा पारी छोरिया ने किन सारू ये अवस्था रे मायने संभाला और बिहारी सखी बना।
1: सही है रमा बहन, क्योंकि ये बखत है मायने शरीर में शारीरिक मानसिक बदलाव रे कारण अपनी छोड़िया कई चुनौतियों का सामना करे है और इरे खातर ही अपने चाहिए कि आपा बिसु खुल प्रार बात करा हाँ और बियाने सही मार्गदर्शन देवा और बाने भावनात्मक सहयोग भी देवा जिके सुबह आपरी बात भी है जिकी खुल प्रार आपारे सामने कर सके है।
0: और देखो बहना जठे बात करा आपा शारीरिक बदलाव री तो इन बारे मायने छोरी री माने या महिला कोई शिक्षक होया करे बियाने इस छोरी ने वैज्ञानिक और सही जानकारी देनी चाहिए कि किन प्रक्रिया सु है कि भी या फिर प्राकृतिक जी की प्रक्रिया होया करे बाकी सारू छोरी रे शरीर मायने बदलाव करिया करे है।
1: और आप अपा बात करा कि भई आज की अवस्था हुए बिंदरे मायने मानसिक स्वास्थ्य री तो इरे खातिर जरूरी है कि अपा छोरिया ने मानसिक रूप से फिट रखन खातिर बियाने योग है व्यायाम है पौष्टिक आहार है इन सारू ज्ञान करावा खेल रे माध्यम से बियारी रुचि जागृत करा बियारे मन री बात जाना छोरिया रे मायने आत्मविश्वास पैदा करा कि बे आपा सु हर बात है जिकी आपरे मन री कोई भी बात हुए चाहे आने कोई भी बात हुए मैं आपा सु खुल प्रार कर सके बियाने हिचक नहीं हुए कि बे मैं मारी मां सु बात करूं तो भाई
0: भावनात्मक रूप से जो माहौल है वो मिलना चाहिए। और देखो खुशबू सागे सागे सबसे मोटी और महत्व बात अभी है कि जिकी आजकल टावरा खातर बहुत जरूरी है और अब आते हैं खान पान और आज खान पान रो आपने सबने ध्यान ही है खुशबू कि टावर किन सारू जंक फूड यानी कि तलियोड़ी भरोड़ी
1: चीजें
0: चीजें खावे तो इन सारू भी जो को पाचन क्षेत्र है वो खराब हो जाए कई तरह की बीमारियां
1: शरीर रे मायने कमजोरी रे
0: कमजोरी आ जाए हाँ। गुण तो करे कोनी बीर अलावा चेहरे रे मायने कील मुहासा देखा और कई बार छोरिया रे बाल झड़ना भी देखा शरीर में थकान देखा और कई कई टावरा रे तो खुशबू यार इतो दुष्प्रभाव होया करे चीजा रो कि बे बकत यानी कि बे उम्र रे मायने भी बियारे धोला बाला लग जाए
1: सही है
0: और चश्मा भी लाग जाए करे आंखें कमजोर हो जाए करे तो इन सारू आपने टावरा ने संतुलित भोजन देवनो चाहिए हरी सब्जियां हैं फल दूध और लो तत्व सु भरपूर आपने बियाने देवनो चाहिए और इरे सागे ही ज्ञान देवनो चाहिए बाने शारीरिक साफ सफाई रो जिया की सैनिटरी पैड और है यार इस्तेमाल करनो शरीर की शुद्धि राखनी इन सु क्या है खुशबू वे देखो कई तरह रे रोग सु तो बची है सागे इन सागे बियाड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े है।
1: पर रमा बहन एक बात और है जी तो आपा अपारी सखिया रे साथे साझा करी ही कोनी
0: बाय कही है खुशबू
1: भाई संगत रो अच्छा, कि आजकल रे टाबरा रे संगत रो भी विशेष ध्यान रखना है क्योंकि आजकल हर टाबरे हाथ में मोबाइल तो जरूरी है तो आपने और ध्यान रखना है कि बे मोबाइल सु आपरा जिको जरूरी काम है नी बे ही करे अनावश्यक कोई भी चीज है बा मैंने नहीं देखे बियारो बियारे पासी बे रुचि नहीं रखे बा आपने ध्यान रखनी जरूरी है
0: और इन सारू खुशबू सबसे पहले जिको दायित्व होया करे वो एक मारो करे बेना तो आपने आपने टावरा री ध्यान रखनी है और देखो कुछ हुआ बात खाली छोरिया री कोनी घर रे टावरा पर भी लागू होया करे और इरे मायने अपनी महिलावा यही होशियार होया करे फिर भी बना अपन थोड़ो सो सचेत होने री जरूरत है और
1: इन जानकारी के साथ है बहना ने सुनावा एक चोखो सो की तड़लो।

0: And with that, we end the midday news. नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमेरिका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से

0: एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
2: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन

0: मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है, उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है, मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन

0: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मेरी उम्र 295.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता ये सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम आपकी कसम।

फिल्म आशा में अभी आपने सुना लता मंगेशकर को। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, उषा मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम तकदीर।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉनिक इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन

0: 90 Hz India ki original awaaz. Akashvani, Akashvani.
1: फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर की ढोल मारू चैनल से सुन रहे हैं।
2: ये किस

फिल्म पाकिजा में अभी आपने सुना मोहम्मद रफी को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में लता मंगेशकर को फिल्म गलियों का बादशाह में।

कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। मेरी उम्र 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण अब यही समाप्त होते हैं। शाम 5 बजे से दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, ये प्रोग्राम हमारे DRM चैनल 1386 किलोहर्ट्ज़ पर भी उपलब्ध थे।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। अब समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोसी मित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई

0: प्रणाली की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: क्वाड देशों ने आज नई दिल्ली में अपने विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान गठबंधन के एजेंडे के प्रगति की समीक्षा की और हिंद प्रशांत से जुड़े क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चर्चा क्वाड सहयोग के चार मुख्य स्तंभों पर केंद्रित रही, जिनमें समुद्री और सीमा पार सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियां, मानवीय सहायता और आपदा राहत शामिल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद रोधी प्रयास क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि बल ने न केवल सीमा की दृढ़ता से रक्षा की बल्कि सीमावर्ती जिलों के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। उन्होंने सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलकर एक चार स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया। श्री शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस ग्रिड की मदद से सीमा पर उत्पन्न खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सकेगा। इससे पहले गृह मंत्री ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चूंकि देश अमृत काल में आगे बढ़ रहा है, उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार के उन पहलों का जिक्र किया है जिनसे देश भर के लोगों को विशेष रूप से नारी शक्ति, युवाओं और किसानों को लाभ पहुंचा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त दिशा
1: और मैं हूं आपका दोस्त आनंद और हम आप सभी का स्वागत करते हैं आकाशवाणी के कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया है कि जब जिंदगी बहुत तेज दौड़ती है ना, तो हम सबको एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां हम रुककर थोड़ी सांस ले सके, है ना। हम सब चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहां हम अपने दिमाग को फिर से रिफ्रेश कर सके, जहां हम ये महसूस कर सके हाँ हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्यों दिशा?
0: बिल्कुल। और कभी कभी जिंदगी हमें कोई बड़ी सीख किसी बड़ी घटना से नहीं, बल्कि एक छोटी सी और एक हल्की सी मुस्कान या किसी साधारण से पल से दे देती है।
1: बिल्कुल।
0: और आनंद, कई बार एक आम सा दिन भी हमें ऐसी दिशा दिखा जाता है जिसकी जरूरत हमें खुद ब खुद पता नहीं होती है। हम सब अपने अपनी कहानियों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ खुशियों की, कुछ संघर्षों की और कुछ उम्मीदों की।
1: जी, और ये कहानियां ऐसे नहीं बनती दिशा, ये कहानियां बनती है भाई साहब घूमने से। बिल्कुल दोस्तों, पर्यटन से। दिशा, आजकल पर्यटन

0: में कोई मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, बल्कि ये लोगों की जीवन शैली का, उनकी लाइफ स्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। हर उम्र के लोग, चाहे बच्चा हो या युवा या बुजुर्ग, सभी घूमने फिरने में रुचि दिखा रहे हैं। कुछ लोग प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए, पहाड़ों की शांति को महसूस करने के लिए, समुद्र तट की लहरों को देखने के लिए घूमते हैं, तो कुछ लोग ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए, धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए और उन सांस्कृतिक शहरों की धड़कन को महसूस करने के लिए यात्रा करते हैं।
1: बिल्कुल आनंद, और पर्यटन के इस बढ़ते चलन के पीछे कई कारण भी था, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यातायात और संचार के साधनों में हुआ ये जो विकास है वही है, क्योंकि आज सड़क, रेल और हवाई यात्रा पहले की तुलना में कितनी तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो गई है। अब लोग कम समय में लंबी दूरी तय कर सकते हैं।
0: बिल्कुल दिशा, ये तुमने बड़ी सही बात कही। वास्तव में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो यात्राएं बड़ी आसान हो जाती है। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बढ़ा है, वैसे वैसे हमारी पहुंच जो है वो लगातार बढ़ती रही है। इसके अलावा रहने और खाने की सुविधाएं भी, हम पहले लोगों को इतनी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती थी तो लोग दूर तक यात्राएं नहीं कर पाते थे, लेकिन आजकल ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बढ़ने की वजह से रहने खाने की सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। शहरों और पर्यटन स्थलों पर अच्छी सेवाएं उपलब्ध हुई है और इसी वजह से आज के टाइम पर्यटन बहुत ज्यादा आसान और आरामदायक बन गया है।
1: बिल्कुल, और हम केवल किताबों की दुनिया को पढ़ना नहीं चाहते आनंद, बल्कि वास्तविक रूप से उसे देखना और महसूस करना भी तो चाहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अब नई जगहों पर जाकर वहां की संस्कृति, भाषा, पहनावा, खान पान को जानने की उत्सुकता लोगों में बढ़ती जा रही
0: है।
1: यही कारण है कि छुट्टियां मिली और लोग घूमने की योजना बनाने लगते हैं।
0: तभी तो लोग अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर थोड़ा सा टाइम निकालते हैं और परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ यात्रा करते हैं। और ये जो यात्राएं हैं, ये हमें मानसिक शांति देती है, हमें खुशी मिलती है, लोगों को जानने का अवसर मिलता है। पर्यटन लोगों को तनाव से राहत देने का अपने आप में बहुत अच्छा माध्यम है।
1: बिल्कुल, और कई क्षेत्रों में तो पर्यटन लोगों की आय का मुख्य स्रोत भी बन चुका है। अब देखो ना, विशेष रूप से जो पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे स्थानीय लोग हैं, वहां के जीवन स्तर को सुधारने में ये काफी हेल्पफुल है। अब सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाती है और पर्यटन स्थलों का विकास करती है, इससे देश की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत होती है।
0: बिल्कुल, और जब विदेशी पर्यटक किसी देश से आते हैं ना, तो वो वहां की संस्कृति को देखते हैं, वहां की परंपरा को देखते हैं और यहाँ की संस्कृति और यहाँ की परंपरा को दुनिया तक पहुंचाते हैं। इससे विभिन्न देशों के बीच एक सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ क्या नहीं है, मतलब यहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं, या राजस्थान के भव्य किले हैं, तो केरल की हरियाली है, गोवा के समुद्री तट है, वाराणसी की आध्यात्मिकता है, चारों तरफ ऐतिहासिक स्मारकें, इन सब से भरा हुआ है हमारा भारत। दोस्तों, पर्यटन केवल और केवल घूमने का, मनोरंजन का ही साधन नहीं है, ये शिक्षा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। लोग जब घूमते हैं तो बहुत सारी चीजों के बारे में जानते भी है। विद्यार्थी जब ऐतिहासिक स्थलों पर जाएंगे, संग्रहालयों में जाएंगे, वैज्ञानिक केंद्रों की यात्रा करेंगे, तो उन्हें किताबों से कहीं अधिक ज्ञान प्राप्त होता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि वास्तविक अनुभव हमेशा अधिक प्रभावशाली रहता है। तो दोस्तों, घूमना बिल्कुल बंद मत कीजिए, घूमते रहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि सैर कर दुनिया की गाफिल
1: जिंदगी फिर कहा,
0: सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी घर रही तो
1: ये जवानी फिर कहां।
0: तो जी हाँ दोस्तों, तो ये जवानी वापस ना मिलने वाली है, तो निश्चित रूप से घूमिए, फिरिए, देखिए कि कैसा है हमारा भारत। इसी के साथ चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

0: दोस्तों अब वक्त हो गया है क्विज टाइम का, जहां हम आपसे पूछेंगे दो सवाल और कार्यक्रम के अंत में देंगे उन्हीं सवालों के जवाब। तो आपका पहला सवाल है, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया?
1: और हमारा दूसरा सवाल है, जो कि बहुत करंट अफेयर्स का ही सवाल है, कि किस देश ने 2026 में 11वीं शताब्दी के चोल तामपत्र भारत को वापस लौटाए हैं? तो जी हाँ दोस्तों, ये है हमारे दो सवाल जिनके जवाब मिलेंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। तो जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम युगवाणी से।
2: ये देख कैसे?
3: हैप्पी बर्थडे बाय।
2: देखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड

और एक फानी सफर आकाशवाणी जिसमें संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृत।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत मतगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: मतगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री
3: मोबाइल चार्ज करना
4: दिमाग चार्ज करा।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
3: तेरी वाईफाई है ना?
4: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
3: एनी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल्स से मिलकर बना है। जब हम बच्चे थे तब हमारा आकार बहुत छोटा था और जब हम इतने बड़े हो गए हैं, इसके अलावा जब कभी हमें चोट लगती थी तो कुछ दिनों में हमारी त्वचा वहां पर बिल्कुल ठीक हो जाती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कैसे होता है?
8: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे जीव विज्ञान की एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया काम करती है जिसे हम कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन कहते हैं। दोस्तों आज हम समझेंगे कि ये क्या होता है और हमारे लिए क्यों जरूरी है।
7: बिल्कुल, और सीधे शब्दों में हम कहें तो वह प्रक्रिया जिसमें एक पुरानी कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका को जन्म देती है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित होती है उसे जनक कोशिका कहते हैं और जो नई कोशिकाएं बनती हैं उसे संतति कोशिका कहा जाता है।
8: हाँ दिशा, और इन्हीं करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बनता है। मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती है और हर कोशिका का अपना अलग कार्य होता है। कुछ कोशिकाएं शरीर

0: ऊर्जा देती है, तो कुछ कोशिकाएं शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, तो कुछ शरीर के अलग अलग अंगों को सही तरीके से चलाने में मदद भी करती है। लेकिन समय के साथ पुरानी कोशिकाएं नष्ट भी होती रहती है, इसलिए शरीर को नई कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है और यही आवश्यकता कोशिका विभाजन में जन्म लेती है।
1: तभी तो आनंद यह प्रक्रिया बिना रुके लगातार चलती रहती है। अब जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब शरीर की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती है जिससे हमारा शरीर भरता है, और बड़े होने के बाद भी कोशिका विभाजन रुकता नहीं है बल्कि शरीर की मरम्मत और संतुलन बनाए रखने के लिए चलता रहता है।
0: तो दोस्तों ये भी जान लो कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन होता है दो प्रकार का, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, और दोनों की प्रक्रिया अलग अलग होती है, दोनों का महत्व भी अलग अलग है। जैसे
1: और सबसे पहले बात करें समसूत्री विभाजन की।
0: हाँ।
1: यह विभाजन शरीर की सामान्य कोशिकाओं में होता है, इसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है और दोनों नई कोशिकाएं बिल्कुल मूल कोशिका जैसी होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या भी समान रहती है। यह प्रक्रिया शरीर की वृद्धि और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
0: और दिशा जी ने जैसे आपको विज्ञान की परिभाषा में बता दिया है, तो मैं सरल बात में आपको बता दूं कि यदि आपके हाथ पे लग गई है चोट और कुछ दिनों बाद वह घाव भर जाता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे होता है? इसका कारण है समसूत्री विभाजन। यानी दोस्तों शरीर की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है और क्षतिग्रस्त भाग को ठीक कर देती है, और यही कारण है कि समसूत्री विभाजन को शरीर की वृद्धि और मरम्मत की प्रक्रिया कहा जाता है।
1: बिल्कुल आनंद। और अब बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, तो यह विभाजन प्रजनन कोशिकाओं में होता है। इसमें एक कोशिका से चार नई कोशिकाएं बनती है, लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब यही प्रक्रिया न हो तो हर पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती जाएगी और जीवों का सामान्य विकास संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन जीवन की निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: बिल्कुल सही दोस्तों दिशा, वास्तव में कोशिका विभाजन केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि सभी जीवों में भी होता है। पेड़ पौधों में भी नई कोशिकाएं बनती है, और जब किसी पेड़ पौधे में नई पत्तियां निकलती है, तना लंबा होता है और उसके पीछे भी कोशिका विभाजन ही जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार जानवरों में भी शरीर की वृद्धि और घाव भरने का कार्य भी कोशिका विभाजन के कारण ही संभव हो पाता है। तो दोस्तों शरीर के स्वस्थ रहने के लिए इस प्रक्रिया का सही तरीके से चलना अनिवार्य है, उसी प्रकार जैसे हमारे कार्यक्रम का चलना। तो आइए चलते हैं हमारे अगले गीत की ओर।

0: दोस्तों, युवाओं के लिए खेल का बहुत महत्व होता है। जी हाँ, और उन्हीं खेलों में एक खेल है आपके फुटबॉल, और ये फुटबॉल वास्तव में खेल से बढ़कर एक जुनून है। तो आइए आज सुनते हैं एक वार्ता, फुटबॉल खेल से बढ़कर एक जुनून। वार्ताकार श्री हितेंद्र सिंह और प्रस्तुति है श्री रेवंत राम लेखा और संयोजन रहेगा श्री अमित सिंह।
1: नमस्कार दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि इस दुनिया में एक ऐसी भी भाषा है जो न किसी देश की मोहताज है न किसी शब्दकोश की। एक ऐसी भाषा जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, बस जज्बा चाहिए। जहां एक छोटी सी फुटबॉल करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाती है, जहां एक मैदान पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ देता है, और जहां जीत सिर्फ स्कोर से नहीं जुनून से तय होती है। जी हां दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल की। दोस्तों, शायद यही वजह है कि फुटबॉल को दुनिया की सबसे यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि इस खेल में न रंग मायने रखता है, न भाषा और न ही देश। एक छोटी सी फुटबॉल अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग देशों और अलग अलग सोच रखने वाले लोगों को भी एक ही इमोशन में बांध देती है, और शायद यही किसी भी खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। आज हम सिर्फ एक खेल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सपनों की, संघर्ष की, डिसिप्लिन की, टीम स्पिरिट की, और उस भरोसे की जो इंसान को हार मानने नहीं देता। दोस्तों, फुटबॉल सिर्फ बड़े स्टेडियम तक सीमित नहीं है, यह खेल किसी गरीब बच्चे की गली में भी खेला जाता है, बारिश में भी खेला जाता है, टूटी चप्पलों में भी खेला जाता है, और कई बार बिना गोल पोस्ट के भी खेला जाता है। लेकिन फिर भी लोग खेलते हैं, क्यों? क्योंकि फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं, एक इमोशन है। शायद यही वजह है कि 90 मिनट का एक मैच लाखों लोगों की धड़कन को एक साथ बांध देता है, और फिर सिर्फ एक गोल पूरा स्टेडियम गूंज उठता है, लोग खुशी से रो पड़ते हैं, अनजान लोग भी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यही फुटबॉल की असली ताकत है। यह खेल सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं, दिलों को कनेक्ट करता है। दोस्तों, आज भारत में भी फुटबॉल का जुनून लगातार बढ़ रहा है। आज छोटे शहरों के बच्चे भी बड़े सपने देखने लगे हैं, कोई मेसी बनना चाहता है, कोई रोनाल्डो, और शायद यही सपने आने वाले समय का भविष्य बदलते हैं, क्योंकि हर बड़ा खिलाड़ी कभी एक छोटे मैदान से ही शुरुआत करता है। दोस्तों, हर चमकती हुई ट्रॉफी के पीछे एक लंबा संघर्ष छुपा होता है। दुनिया जिन खिलाड़ियों को आज लेजेंड कहती है, उनकी जर्नी कभी आसान नहीं रही। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक साधारण परिवार से आए, रिसोर्सेज सीमित थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को बहाना नहीं बनाया, बल्कि मेहनत को अपनी पहचान बना लिया। आज रोनाल्डो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, डेडिकेशन और डिसिप्लिन का ग्लोबल सिंबल बन चुके हैं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है, टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको महान बनाता है। और दूसरी तरफ लियोनेल मेसी, एक छोटा सा बच्चा जिसे बचपन में ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी जैसी समस्या

समस्या का सामना करना पड़ा। कई लोगों को लगा शायद ये बच्चा प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, लेकिन उसी बच्चे ने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने डेडिकेशन से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। मैसी हमें सिखाते हैं कि शांत लोग भी इतिहास लिख सकते हैं। अगर आपके अंदर हंगर है, लगन है, तो आपकी शुरुआत कैसी भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, किसी भी खिलाड़ी की असली पहचान उसकी जीत से नहीं होती, बल्कि उस संघर्ष से होती है जो उसने हार के बाद भी जारी रखा, क्योंकि असली चैंपियन वही होता है जो गिरने के बाद भी खुद को दोबारा खड़ा कर सके। दोस्तों, फुटबॉल सिर्फ खेलना नहीं सिखाता, यह हमें जिंदगी जीना भी सिखाता है। सबसे पहली सीख, डिसिप्लिन। मैदान में टैलेंट जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन उससे भी ज्यादा जरूरी है। सुबह की प्रैक्टिस, फिटनेस, फोकस, कंसिस्टेंसी, यही वो चीजें हैं जो किसी भी इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। आज की जनरेशन जल्दी सक्सेस चाहती है, लेकिन फुटबॉल हमें पेशेंस भी सिखाता है। हर गोल के पीछे सैकड़ों घंटे की प्रैक्टिस छुपी होती है, हर जीत के पीछे अनगिनत सैक्रिफाइसेस छुपे होते हैं, और शायद यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो फुटबॉल सिर्फ मैदान में खेला जाने वाला खेल नहीं है, ये उम्मीद का नाम है, ये विश्वास का नाम है, ये उस जिद का नाम है जो इंसान को गिरकर दोबारा उठना सिखाती है। कई बार खिलाड़ी पूरा मैच खेलते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी हार जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अगला मैच खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हार हमेशा आखिरी सच नहीं होती, और शायद जिंदगी भी हमें यही सिखाती है। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां लोग छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं, वहां स्पोर्ट हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। फुटबॉल हमें सिखाता है कि प्रेशर में शांत कैसे रहना है, हार के बाद खुद को संभालना कैसे है, और जीत के बाद विनम्र कैसे रहना है। यही क्वालिटीज सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी की ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान की भी पहचान होती है। दोस्तों, जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसके पास सिर्फ टैलेंट नहीं होता, उसके साथ होती है सालों की मेहनत, परिवार की उम्मीदें, कोच का विश्वास और खुद से किया हुआ एक वादा। शायद इसीलिए जब कोई खिलाड़ी गोल करता है तो वो सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होता, वो उसके संघर्ष की कहानी होती है। और यही कारण है कि फुटबॉल आज सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों की भावना बन चुका है। दोस्तों, खेल हमें सिर्फ जीतना नहीं सिखाते, वे हमें इंसान बनना सिखाते हैं। रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, पेशेंस, टीम स्पिरिट और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, ये सारी बातें किताबों से ज्यादा मैदान सिखाता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है, विनर्स मैदान में नहीं बनते, वे रोज की मेहनत और डिसिप्लिन से बनते हैं। फुटबॉल की दूसरी सीख, टीम वर्क। एक खिलाड़ी अकेले वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, और जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर और मेंटर्स, हर इंसान की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जो इंसान साथ लेकर चलना सीख जाता है, वही असली लीडर बनता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट सीख, नेवर गिव अप। दोस्तों, फुटबॉल में कई बार आखिरी मिनट में पूरा मैच बदल जाता है, और जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। कई लोग लाइफ में सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे आखिरी कोशिश से पहले रुक जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर स्कोर अभी आपके फेवर में नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि गेम खत्म हो चुका है, शायद जिंदगी आपको एक्स्ट्रा टाइम देने वाली हो। दोस्तों, कई लोग फुटबॉल को सिर्फ एक स्पोर्ट समझते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो फुटबॉल पूरी जिंदगी का रिफ्लेक्शन है। मैदान में खिलाड़ी गिरते हैं, चोट खाते हैं, आलोचना झेलते हैं, लेकिन फिर भी वे दोबारा उठते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर कोशिश करते हैं, और शायद यही चीज उन्हें ऑर्डिनरी से अलग बनाती है। रोनाल्डो ने एक बार कहा था, योर लव मेक्स मी स्ट्रॉन्ग बट योर हेट मेक्स मी अनस्टॉपेबल। और यही जिंदगी की भी सच्चाई है, दुनिया हमेशा आपकी कमजोरियां बताएगी, लेकिन आपकी मेहनत ही आपकी असली पहचान बनाएगी। अगर आज लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे तो निराश मत होइए, बस खुद पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि एक दिन वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे। दोस्तों, जब भी आप किसी खिलाड़ी को एक मैदान में खेलते हुए देखें तो सिर्फ उसकी जीत मत देखिए, उसकी मेहनत देखिए, उसका डिसिप्लिन देखिए, उसका संघर्ष देखिए, क्योंकि मेडल्स चमकते जरूर हैं, लेकिन उन्हें बनाने में वर्षों की मेहनत लगती है। दोस्तों, स्पोर्ट्स लोगों को जोड़ते हैं, बांटते नहीं है। आज भाषा अलग हो सकती है, देश अलग हो सकते हैं, संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन फुटबॉल ग्राउंड पर सब सिर्फ खिलाड़ी ही होते हैं, और शायद यही किसी भी खेल की सबसे

0: सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, मेहनत करिए। अगर आप स्ट्रगल में हैं, खुद पर भरोसा रखिए। अगर आप हार चुके हैं तो एक बार फिर उठिए, क्योंकि फुटबॉल की तरह जिंदगी में भी ग्रेट कमबैक हमेशा पॉसिबल होता है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, मैदान में वही खिलाड़ी चमकता है जो प्रेशर में भी खुद पर भरोसा रखना जानता है। खेल सिर्फ मैदान ही बदलते, कई बार जिंदगियां भी बदल देते हैं। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, अभी आपने सुनी एक वार्ता, फुटबॉल खेल से बढ़कर एक जुनून। वार्ताकार थे श्री हितेंद्र सिंह। दोस्तों, वास्तव में भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में ही है, और जब युवा मजबूत होगा, आत्मनिर्भर होगा और उसके पास रोजगार के अवसर होंगे, तभी देश सही मायने में विकसित बन पाएगा। वास्तव में युवा कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव कर दे, ये शक्ति युवाओं की हम अमावस्या के अंधेरों में भी चांद उगाने आए हैं। दोस्तों, इसी सोच और इसी विजन के साथ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जैसी पहल को आगे बढ़ाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना है, उद्योगों को मजबूत बनाना है, भारत को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है।
2: बिल्कुल आनंद, और देश को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ इस योजना को धरातल पर उतारा गया। इस योजना के तहत पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है, और अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले नियोक्ताओं को भी सब्सिडी प्रदान की जाती है।
1: और तो दिशा, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है, है ना? सर्वाधिक युवा यहाँ पर है। करोड़ों युवा पढ़ाई पूरी करके हर साल नौकरी की दुनिया में कदम रखते हैं, लेकिन कई बार स्किल की कमी, अनुभव की कमी और सही अवसर न मिल पाने के कारण उन्हें नौकरी पाने में कठिनाई होती है।
2: बिल्कुल, और कंपनियों और उद्योगों को भी ऐसे प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता होती है जो आधुनिक तकनीक और बढ़ते समय के अनुसार काम कर सके, और यही अंतर रोजगार की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी चुनौती का समाधान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
1: दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ नौकरी देना नहीं है, बल्कि युवाओं को इस तरह तैयार करना है कि वे भविष्य की जरूरतों के अनुसार खुद को डाल सके, खुद को देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।
2: बिल्कुल, और इस योजना का सबसे बड़ा मोटिव है हर हाथ को हुनर और हर हुनर को सही काम।
1: यानी दोस्तों, कॉलेज या पढ़ाई पूरी करने के बाद जब युवा मार्केट में जाए तो वो खाली हाथ ना हो, उसे कंपनियों की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देना, उसे तैयार करना, उसे स्किलफुल बनाना, और तभी वो वास्तव में भारत के लिए महत्वपूर्ण बन पाएगा, वो भारत का भाग्य विधाता बन पाएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनेंगे हम कैलाश खेर का ये संदेश।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मानव क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।
2: सोचिए दोस्तों, सुबह का समय हो, चारों तरफ घने जंगल हो, पहाड़ों के ऊपर सफेद बादल तैर रहे हो और झरनों की आवाज कानों में संगीत की तरह सुनाई दे रही हो, ठंडी हवा चेहरे को छू रही हो, ऐसा लग रहा हो कि जैसे हम किसी फिल्मी दुनिया में पहुंच गए हो। लेकिन ये कोई सपना नहीं है, भारत में सच में ऐसी ऐसी अद्भुत जगह मौजूद है। हम अभी बात कर रहे थे ना पर्यटन की, घूमने की, है ना, तो घूमने की कुछ जगह भी अपने दोस्तों को अगर मैं बताऊं तो बेहतरीन जगह है पश्चिमी घाट।
3: बिल्कुल, पश्चिमी घाट सिर्फ पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला नहीं है बल्कि प्रकृति का एक अनमोल खजाना भी है। यहाँ की हरियाली, जंगल, नदियां, झरने और दुर्लभ जीव जंतु इसे पूरी दुनिया में खास बनाते हैं। यही तो कारण है कि यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा तो दिया है।
2: हाँ दोस्तों,

0: पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और लगभग 1600 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक जाते हैं। और दोस्तों, पश्चिमी घाट के का एक नाम जो है वो सह्याद्री पर्वत भी है। क्या आपको पता है दिव्या?
1: बिल्कुल, सह्याद्री का मतलब होता है दयालु पहाड़। और सच में ये पहाड़ लाखों लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
0: जी हाँ, केरल का मुन्नार, तमिलनाडु का ऊटी, कर्नाटक का कुर्ग पश्चिमी घाट के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में गिने जाते हैं। और साथ ही साथ ऊटी को हम जो है क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं, और कुर्ग को जो है वो भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है साहब।
1: लेकिन दोस्तों, पश्चिमी घाट सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, पश्चिमी घाट को भारत का वाटर टावर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कई बड़ी नदियां निकलती हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा जैसी नदियां पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं।
0: यानी कि पश्चिमी घाट जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का भी बड़ा केंद्र है। और उदाहरण के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर लॉइन टेल्ड मॉस्क्यूर यानी कि नाम के बंदर यहाँ पर पाए जाते हैं, जो सिर्फ पश्चिमी घाट के जंगलों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पर्पल फ्रॉग नाम का एक अनोखा मेंढक भी पाया जाता है। मतलब कि आप केवल यहाँ घूमेंगे नहीं, यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को भी देख पाएंगे। पश्चिमी घाट दोस्तों, यहाँ पर हाथी, बाघ, तेंदुए और कई दुर्लभ पक्षी भी पाए जाते हैं।
1: बिल्कुल आनंद। और वैसे आनंद, पश्चिमी घाट की तो बातें कई काफी सारी होगी, तो बताए कि भारत के संविधान का आर्टिकल 76।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल पता है। और दोस्तों, मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 यानी कि 76 आर्टिकल भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद है। और ये एक ऐसा पद है जो सुनने में थोड़ा गंभीर, थोड़ा कानूनी लग सकता है, लेकिन ये बेहद दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं इसके बारे में?
1: तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपका किसी से कोई कानूनी विवाद हो जाए तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, आप एक अच्छा सा वकील ढूंढते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भारत सरकार का वकील कौन है? अगर कोई सरकार पर केस कर दे या सरकार को किसी पेचीदा कानूनी मामले में सलाह चाहिए हो तो सरकार किसके पास जाएगी?
0: किसके पास जाएगी? आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं और हम रुक करेंगे हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 की तरफ, जो हमें मिलवाता है देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी से, जिसे हम कहते हैं महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
1: दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में सरकार की उस विधि अधिकारी का पद है जो अदालत में सरकार की ढाल और तलवार दोनों बनता है।
0: और सबको पहला सवाल कि कौन चुनता है इन्हें, तो अनुच्छेद 76(1) कहता है कि देश के महान्यायवादी की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति करते हैं और ये अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही रहता है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं इनके काम की, जिसका जिक्र अनुच्छेद 76(2) में है। क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में?
1: दोस्तों, उनका मुख्य काम भारत सरकार को उन कानूनी मामलों पर सलाह देना है जो राष्ट्रपति उनके पास भेजते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, महान्यायवादी को देश की संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई में बैठने और बोलने का अधिकार होता है। वे संसद की कमेटियों में भी शामिल हो सकते हैं, हालांकि वे वहां वोट नहीं डाल सकते हैं। तो अब हम महान्यायवादी की चर्चा को यहीं छोड़ते हैं और फिर से उसी पश्चिमी घाट की उन वादियों की तरफ चलते हैं, जहां पर एक हल्की हल्की बारिश हो रही है, बढ़िया बूंदाबांदी हो रही है, बादल घिरे हुए हैं चारों तरफ, और उस शानदार मौसम का ये गीत।

0: दोस्तों हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की। जैसे कि इस योजना के तहत जो है वो रोजगार के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों के अंदर, इस बच्चों के अंदर, जो युवाओं के अंदर जो स्किल डेवलप की जाती है, तो हमें जागरूक होना भी आवश्यक है कि कौन सा रोजगार की सूचना, कौन सी विज्ञप्ति अभी निकली है। तो दोस्तों बात करते हैं इस बार की रोजगार सूचना की, और आज की रोजगार सूचना है SSC CGL यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से,
1: जहां पदों की संख्या है 12,256, जहां सीजीएल के ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के आवेदन मांगे गए हैं।
0: आवेदन की शुरुआती दिनांक 21 मई 2026 है और अंतिम दिनांक 22 जून 2026 है, यानी भाई साहब महीना शुरू हो चुका है, आपको लेट नहीं करनी है और आवेदन जल्दी से जल्दी भर देना है। और अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: आनंद, क्या तुम्हें याद है कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने दोस्तों से दो सवाल पूछे थे?
0: बिल्कुल, और अब समय है हम जब सवालों के उन्हें जवाब दे।
1: तो हमारा पहला सवाल था, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया?
0: इसका सही उत्तर है चंद्रयान 3। और हमारा दूसरा सवाल था, किस देश ने 2026 में 11वीं शताब्दी के चोल ताम्रपत्र भारत को वापस लौटाए थे?
1: जिसका सही जवाब है नीदरलैंड।
0: जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे दो सवाल और उनके सही जवाब, और निश्चित रूप से आपने सही जवाब सोचे होंगे। दोस्तों आज का ये कार्यक्रम बहुत ही हमारा शानदार रहा, हमने कई विषयों पर बातचीत करी, हमने पर्यटन को समझा, साथ ही साथ कोशिका विभाजन के बारे में भी जाना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में भी बात की, और यूं ही घूमते हुए बात करते हुए समय की जो चाल है वो बता रही है कि अब विदा लेने का समय है। तो ये थे युववाणी का कार्यक्रम, मैं आपका दोस्त आनंद
1: और मैं दिशा, नमस्कार।

ये था युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:55 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए हमारी सभा के कार्यक्रमों का विवरण।

आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से जिले की चिट्ठी शाम 6:42 पर सुनिएगा। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7:00। श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम में चर्चा, फसल वृद्धि में मधुमक्खियों का योगदान, नेत्रदान महादान, अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण, नौतपा में पशु प्रबंधन, साथ ही अन्य जानकारियां और लोक संगीत। कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7:00। हमारी सभा के सुगम संगीत के कार्यक्रम शाम 7:45 पर और रात्रि 9:30 पर होंगे। लोक संगीत हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:30 पर। हमारे इस सभा के फिल्म संगीत के कार्यक्रम इस प्रकार हैं। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज के संगीतकार हैं सलिल चौधरी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप रात्रि 8:00 भी सुनेंगे, रात्रि 9:15 भी सुनेंगे और रात्रि 10:00 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6 बज रहे हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार हिंदी भाषा में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जलडमरू मध्यम में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ

0: पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। IPL क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: रेडियो 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज आप कार्यक्रम में सुनेंगे सलिल चौधरी की संगीत रचनाएं। सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है आनंद महल। इसे गाया है यीशुदास ने। गीतकार योगेश।

0: दोनों ही बदली स्टाइल गया है पर्पल। जो कहानियां सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड बेस OTT ऐप नाउ।

कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज के संगीतकार हैं सलील चौधरी। और अब सुनिए अन्नदाता फिल्म से मनाडे और साथियों को। गीतकार हैं योगेश।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम मधुमति, गीतकार शैलेंद्र, और आप सुन रहे हैं एक ही संगीतकार कार्यक्रम। संगीतकार हैं सलील चौधरी। लीजिए अब सुनिए फिल्म छाया से लता मंगेशकर और तलत महमूद को, बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं।

0: फिल्म का नाम मेरे अपने, गाय कलाकार किशोर कुमार, गीतकार गुलजार और संगीतकार सलील चौधरी। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह कार्यक्रम एक ही संगीतकार, आज के संगीतकार थे सलील चौधरी। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के श्रोताओं, शाम के 6:30 हो रहे हैं और अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। अगले साल दिसंबर से व्यावसायिक उड़ानों के संचालन के लिए तैयार होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों के लिए भर्ती कार्यक्रम जारी किया। और प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित, कई स्थानों पर रात का पारा भी 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलाकर चतुष्कोणीय ग्रिड तैयार करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी खतरे से निपटने की संयुक्त जिम्मेदारी इन सभी की होनी चाहिए। श्री शाह आज बीकानेर के पास बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर आयोजित प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चतुष्कोणीय ग्रिड के माध्यम से ही सीमा पर उत्पन्न खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सकता है।
2: हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़े और ये बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक, ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ की सरकार का स्थानीय प्रशासन, ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं, कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते।
1: गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए चलाए जा रहे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए सीमा पर स्थित गांव के लोगों को भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 महीने में कर दी जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि राजस्थान में 1096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड बनने से न केवल बीएसएफ की सुविधाएं बढ़ेंगी बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। उन्होंने सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र के नागरिकों और युवाओं से लगातार संवाद

0: कर उन्हें सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश के सुरक्षा तंत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है।
1: सेना को आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं। और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने सीमा पर तैनात जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण भी किया। गृहमंत्री ने बीकानेर में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय गृह मंत्रालय और BSF के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण अगले वर्ष अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद यहां से उड़ानें संचालित हो सकेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर आज नई दिल्ली में हुई बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को कोटा एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री बिरला ने पुराने एयरपोर्ट के स्थान पर एक फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा। इस बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कोटा के संभागीय आयुक्त, कोटा बूंदी के जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। गौरतलब है कि 1088 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। एयरपोर्ट का रनवे लगभग 3 किलोमीटर लंबा होगा। इस रनवे पर दुनिया के बड़े एयरक्राफ्ट भी आसानी से उतर सकेंगे। एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री क्षमता लगभग 20 लाख यात्रियों की होगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रदेश की 3 विभूतियों को बधाई दी है। श्री बागड़े ने कहा कि इन हस्तियों के सम्मान से पूरा राजस्थान गौरवान्वित हुआ है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66 विभूतियों को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया। इनमें प्रदेश की 3 हस्तियां, सामाजिक सेवा और लोक कल्याण के क्षेत्र में योगदान करने के लिए स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, लोकवाद्य भपंग को वैश्विक पहचान दिलाने वाले गफरुद्दीन मेवाती जोगी और अलगोजा वादक तगाराम भील भी शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक के 6500 पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड सचिव ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा के सुगम संचालन के लिए विभिन्न विषयों की परीक्षाओं को 4 ग्रुप में विभाजित किया है। विषयों और परीक्षाओं की तिथि की जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। गौरतलब है कि ये परीक्षा 10 विषयों के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। प्रदेश में किसानों को नकली और अमानक बीजों से बचाने के लिए कृषि विभाग की ओर से आज बीकानेर, सीकर, जोधपुर और जयपुर में व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और अन्य अधिकारियों ने अलग अलग जगह नकली बीज बनाने वाली 14 फैक्ट्रियों में छापेमारी की। चौमू स्थित एक बीज कंपनी में छापेमारी के दौरान श्री मीणा ने दावा किया कि कंपनी में गुणवत्ताहीन मूंगफली के बीज की पैकिंग की जा रही थी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार नकली बीज बनाने और बेचने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी बुवाई सत्र के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता

0: गुणवत्ता वाले प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जयपुर जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू के दुष्परिणाम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि अभियान के दौरान लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, साथ ही परामर्श और आवश्यक रेफरल सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस बीच आज महिलाओं और बालिकाओं में एनीमिया की दर कम करने के लिए शक्ति दिवस आयोजित किया गया। हर मंगलवार को आयोजित होने वाले शक्ति दिवस के दौरान अस्पतालों में बालिकाओं और महिलाओं की हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, साथ ही एनीमिया के उपचार के लिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इन क्षेत्रों के कई जिलों में आज भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ रात में भी पारा सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 47 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। फलोदी और बीकानेर में 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बीती रात कोटा, बीकानेर, संगरिया, करौली और दौसा में न्यूनतम तापमान 32 डिग्री से ऊपर मापा गया। झुलसाने वाली गर्मी और तेज धूप के कारण दिन के समय सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित रही। चूरू में भीषण गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बाड़मेर और जैसलमेर में भी लगातार जारी लू से लोग बेहाल हैं। भीषण गर्मी और लू से बचाव के प्रबंधों को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज जिला अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया को उन्होंने बताया कि अधिकारियों को बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
1: जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए विभाग पूरी तरह से प्रयास कर रहा है और मैं समझ सकता हूँ कि जल्दी ही बिजली विभाग आज बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करेगा, पानी की आपूर्ति सुचारू हो और अन्य विभागों को भी निर्देश दिए हैं जनता के प्रति जवाबदेह होकर उनकी समस्याओं का निदान समाधान सुनिश्चित करें।
0: मौसम केंद्र जयपुर ने कल भी तेज गर्मी और गर्म हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं 28 मई से प्रदेश के कुछ भागों में आंधी और बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 52 जोड़ी रेल सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के 132 अतिरिक्त डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये बढ़ोतरी जून माह के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे यात्रियों को प्रतीक्षा सूची की समस्या से राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम हो सकेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, वहीं हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। अगले साल दिसंबर से व्यावसायिक उड़ानों के संचालन के लिए तैयार होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी किया। और प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित। श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रीगंगानगर जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। हीट वेव के हालात और अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंचने से लोग बेहाल हो रहे हैं। दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं गर्मी से राहत के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। नगर परिषद के अलावा लोग खुद के स्तर पर भी छिड़काव कर रहे हैं। वहीं भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर पीने के ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही ओआरएस के पैकेट बांटे जा रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। गंगा दशमी के मौके पर जिले में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। जिला स्तरीय कार्यक्रम शिवपुर हेड पर रखा गया। जिला कलेक्टर अमित यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत वर्षा जल संग्रहण और पानी की बचत के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां रखी जाएंगी। इसके अलावा स्वच्छता, श्रमदान, जल संरक्षण शपथ और पौधरोपण भी किया जाएगा। जिलास्तरीय कार्यक्रम में किसानों से सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग की अपील की गई। साथ ही उन्हें डिग्गी निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। जिले में पारंपरिक कुओं, बावड़ियों और तालाबों की भी अभियान के तहत साफ सफाई की जाएगी। वहीं विभिन्न औद्योगिक समूहों, भामाशाहों और नागरिकों को अभियान से जोड़ा जाएगा। जल संकट से निपटने के लिए इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ये प्रयास जल आत्मनिर्भरता और हरित राजस्थान बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे। प्रदेश के सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त पिछले दिनों सूरतगढ़ प्रवास पर रहे। उन्होंने गंगानगर के लिए सहकारी बैंक की रजियासर शाखा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रुपए के बीमा सहायता राशि के चेक सौंपे गए। कार्यक्रम में श्री दत्त ने सहकार से समृद्धि योजना के नवाचारों का भी जिक्र किया। उन्होंने सहकारिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्रीगंगानगर में एसीबी ने घड़साना थाने के एसआई रामेश्वर लाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी ने ये रकम परिवादी से पिछले साल दर्ज एक मुकदमे में कार्रवाई नहीं करने की एवज में मांगी थी। बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में अब तक 3,000 से ज्यादा पात्र किशोरियों को ये टीका मुफ्त लगाया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने अभिभावकों से 14 वर्ष की बालिकाओं को ये टीका लगवाने का आग्रह किया है। आशा सहयोगिनियां और एएनएम भी घर घर जाकर लोगों को इस टीके के बारे में जागरूक कर रही है। श्रीगंगानगर के युवा क्रिकेटर मानव सुथार का भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ ही जिले में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों की ओर से मानव के परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विनोद सहारा ने उनकी इस शानदार उपलब्धि को जिले के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। मानव को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने वाले कोच धीरज शर्मा ने भी उनकी इस कामयाबी पर खुशी जताते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं रांची में आयोजित सीनियर नेशनल फेडरेशन कप में जिले के रावला क्षेत्र की एथलीट कुलविंदर कौर ने हैमर थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए कुलविंदर ने 57 मीटर 76 सेंटीमीटर दूर हैमर फेंक कर ये उपलब्धि हासिल की। पुलिस ने श्रीगंगानगर में ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 5 अवैध हथियार और भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने समीजा कोठी इलाके में ये कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि मामले में तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है। फिट इंडिया मिशन के तहत संडे ऑन साइकिल अभियान के जरिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। इसी के तहत दौलतपुरा से क्यू हेड सीमा चौकी तक साइकिल रैली निकाली गई। बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों के साथ इस रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी भाग लिया। क्यू हेड पोस्ट पर रैली के समापन पर योग सत्र रखा गया। इसमें प्रतिभागियों को योगाभ्यास करवाया गया। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: खास समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजय बनावन सारू बीएसएफ फौज प्रशासन और जनता कानून मिलर काम करण माथे जोर दिनो। कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा आवता साल दिसंबर उड़ाना शुरू होला। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती सारू परीक्षा रो कार्यक्रम जारी किनो। और प्रदेश के हल्का माए लू रो कोप कई थोड़ा रात्रि बगति पारो 32 डिग्री सेल्सियस ने पार किनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजय बनावट सारू बीएसएफ फौज प्रशासन हर जनता ने मिलार ग्रिड बनाना घणो जरूरी है। श्री शाह आज बीकानेर कने बीएसएफ री सांचू पोस्ट माथे रखे जा प्रहरी सम्मेलन में बोल रहा है। वे कहो कि इन ग्रिड रे जरिए सरहद माथे रा खतरा रो पूरी ताकत मुकाबलो करियो जा सके है।
1: हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़े और ये बीएसएफ सेना और जागरूक नागरिक ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं और इसके साथ साथ यहां की सरकार का स्थानीय प्रशासन ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते।
0: श्री शाह सरहदी हल्का ना विकास सारू चलाया जा रहा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम रो जिक्र करता था का कहो का इरे जरिए सरहद माथा बसियोड़ा गांव रा लोगा ने केंद्र और राज्य सरकार री जनता रा भलारी योजना मा रो फायदो मिल सकेला। वे कहो का सरहदी हल्का माए ड्रोन न खत्म करन री मशीना बनावन रो कारखानो लगावन रो काम 6 महीना माए शुरू करती हो चावेला। गृह मंत्री कहो कि प्रदेश में 1096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड बनवाऊ बीएसएफ रो सुबी तो बधवा सके सरहदी हल्का रो जुड़ाव भी मजबूत बनेला। गृह मंत्री सरहद 50 किलोमीटर अंदर ताई रा हल्का ने जनता और नौजवानों लगातार बातचीत कर और वहां माए सरहद री हिफाजत जुड़िया मुद्दा ने बारा माए जाग जगावन ने जरूरी बतायो। श्री शाह कहो कि साल 2014 पाछे फौज और अर्ध सैनिक बनाने और मजबूत बनावन सागे आतंकवाद के खिलाफ करड़ो रुख अपनाई चियो है।
1: सेना को आधुनिकरण हो रहा है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकरण करने जा रहे हैं और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई।
0: इनो पहली गृह मंत्री सरहद माथा तैनात जवाना रो उमाव बधाता थका देश री हिफाजत माए हमारा योगदान रे सराहना कीनी। ई मौके वे सरहद माथे बनी चौकियां माए महिलाओं सारू नूवी बनाई जी 14 बैरकां ने इलेक्ट्रॉनिक तरीका जनता ने सौंपी। गृह मंत्री बीकानेर माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सागे प्रशासन और पुलिस रा आला अहलकारा हुई बातचीत कीनी। कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डो बनावन रो काम आवता साल अक्टूबर महीना ताई पूरो कर लियो जावेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला री सदारत माए आज नई दिल्ली माए फी मीटिंग माए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रा अहलकार आ जानकारी दीनी। ई पाछे वठे जहाज उड़ान भरन लगेला। हवाई अड्डा दिसंबर 2027 ताई नियमित हवाई सेवा शुरू भेजा वेला। लोकसभा अध्यक्ष जूना हवाई अड्डा रिठौड़ एक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोलन रे बारे में विचार करन सारोई कहो। ध्यान जोग है कि 1088 एकड़ हल्का माए बन रहा ई ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा रो रनवे 3.2 किलोमीटर लंबो फैला। ई हवाई अड्डा हर साल 20 लाख मुसाफिर उड़ान भर सकेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े पद्मश्री नवाजी जी प्रदेश री तीन विभूतियां ने बधाई दीनी है। श्री बागड़े कहो कि आ हस्तियां रा मानो राजस्थान रो मथो ऊंचो भयो है। ध्यान जोग है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काल 66

0: भूतियाने राष्ट्रपति भवन में पद्म अलंकारों नवासी ही श्यामाय राज्यरा समाजसेवी स्वामी ब्रह्मदेवजी महाराज भपंग ने दुनिया में ओळखाण दिरावण वाला गफरुद्दीन मेवाती जोगी और अलगोजारी मीठी धुन दुनिया भर में पुगावण वाला तगाराम भील रो पद्मश्री पुरस्कार देर मांग करी चो हो। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC माध्यमिक शिक्षा विभाग में 10 विषयों में वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथा भर्ती रो कार्यक्रम जारी करती नो है। बोर्ड रा सचिव बतायो का इम्तिहान 12-18 जुलाई तक लियो चावेला। न्यारा न्यारा विषयों री परीक्षाओं ने 4 ग्रुप में बांटी ची है। प्रदेश में किसानों ने नकली और अमानक बीजों बचावन सारू कृषि विभाग बीकानेर सीकर जोधपुर और जयपुर में आज खास अभियान चलायो। इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एहलकारन सागर मिलर कथित नकली बीज बनावन रा 14 कारखाना माथे छापा मारिया। कृषि मंत्री चोमूरी एक बीज कंपनी में छापेमारी रे दौरान कंपनी में घटिया मूंगफली रा बीज री पैकिंग रो दावो कीनो। डॉक्टर मीणा कहो के सरकार आवता बुवाई सत्र सारू किसानों ने बेहतर गुणवत्ता वाला प्रामाणिक बीज मुहैया कराने तय कीनो है। तंबाकू रा गलत नतीजे ने बारा माए जनता माए जाग जगावन रा मकसद जयपुर जिला माए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री ओर खास अभियान चलायो जा रहा है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत बतायो के अभियान रे जरिए लोगों ने तंबाकू छोड़ बारी सीख देवन सागे इनो जुड़ी राय और जरूरी सेवा मुहैया कराई जावेला। 31 मई में मनाया जावन वाला विश्व तंबाकू निषेध दिवस रे मौके सगला आयुष्मान आरोग्य मंदिरा माए खास कार्यक्रम रखा जावेला। ई विजय महिलावा और टाबरिया माए खून री कमी री परेशानी कम करण सारू आज शक्ति दिवस मनाई चियो। इस दौरान अस्पताल में महिलाओं का शरीर में खून री जांच सागे इनरी कमी रो इलाज करी चियो और आयरन री गोलियां दे री ची। अब मौसम प्रदेश में नेरी नेरी छोड़ा लू बाजानो जिंदगी माथे घनो असर पड़ियो है। राज्य रा आतुणी उत्तराद और उगली जिला में आज ही पारो 44-46 डिग्री सेल्सियस या इनो ऊंचो दर्ज करी चियो। श्री गंगानगर में 47 जबकि फलौदी और बीकानेर में 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। रात्रि भगत ही तापमान सामान्य ऊंचो चाल रियो है। बीती रात कोटा बीकानेर सांगरिया करौली और दौसा में रात रो तापमान 32 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। चूरू में पड़ रही जोरदार गर्मियों लोगों ने घनी परेशानी रो सामो करनो पड़ रियो है। बाड़मेर और जैसलमेर में लगातार बाज रही लू हाल बेहाल है। ई बीच भयंकर गर्मी और लू बचाव रा प्रबंध रो जायजो लेवन सारू गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज डी माए अहलकारन सागे मीटिंग कीनी। ई पाछे खबर नवीसन सागे बातचीत करता था कांवे कहो के अहलकारन ने बिजली पानी री पूर्ति बनाई राखन रा हुकम दिया चिया है।
1: जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप बिजली उपलब्ध हो इसके लिए विभाग पूरे तरह से प्रयास कर रहा है और मैं समझ सकता हूँ कि जल्दी ही बिजली विभाग आज बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करेगा, पानी की आपूर्ति सुचारू हो और अन्य विभागों को भी निर्देश दिए हैं जनता के प्रति जवाबदेह होकर उनकी समस्याओं का निदान समाधान सुनिश्चित करें।
0: मौसम केंद्र जयपुर काली मौसम सूखो रेवन सागे उन्नो बायरो बाजन रा आसार जताया है। इन बीच 28 मई प्रदेश में कच्चे कच्चे आंधी बारिश रेवन री संभावना है। गर्मी री छुट्टियां माए मुसाफिरा रा सुविधा सारू उत्तर पश्चिम रेलवे री 52 जोड़ी गाड़ियां माए 132 और डिब्बा जोड़िया जावेला। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी। वे बतायो के आ बढ़ोतरी जून महीना माई करी चावेला। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत आज 15 दिन ताई ऑनलाइन तरीका अर्जी दी जा सके है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत काल पाली माई बतायो हो के इन योजना रा तहत रेल और हवाई

0: कार्यक्रम सुनना सगड़ा भाया अर बहनों ने आप रहे तले भरत कुमार जाजड़ा अर
1: राकेश कुमार जोशी रा घना घना
0: राम राम राम राम।
1: देखो भरत भाई, आपने खेती बाड़ी में अपा क्यों हाँ कि किसान रो योगदान है, बरसात रो योगदान है, माटी रो योगदान है, पर भी छोटा मोटा जीव जनावर रो योगदान भी घणो होया करे।
0: बिल्कुल वैसा घणो ही है।
1: हाँ,
0: सब आपू आपरे भागरो है।
1: हाँ,
0: जो को कमावे सब आपू आपरे भागरो खावे
1: भी
0: और आपू आपरे भागरो जो को है अन्न निपजे सगड़ा वास्ते।
1: तो माटी में जिका सूक्ष्म जीव है बे किसानारा मित्र मानी जाए।
0: बिल्कुल
1: केंचुओ है वो भी किसानारा मित्र मानी
0: जाए।
1: पर एक उड़ने वालो कोई छोटो मोटो कीट पतंगो है वो भी मित्र मानी जाए। बता सको देख पहली है ताकतर।
0: देखो घणाई है उड़ने वाला बात करा सगले पक्षी जका है कठे में कठे पारिस्थितिक तंत्र में आपकी मदद करी है प्रकृति में सगला आपकी भूमिका होया करे। मेरे अलावा बात करा तो उड़ने वाला जीव मैंने कई ऐसा जीव होया करे है जका की फसल मैंने हानिकारक जीवाणु ने खा जाए। थैंकी से उड़ने वाला जीव बात करे हो
1: मैं बात कर रही हूं मधुमक्खी री।
0: अरे थारी नु खाओ नाम सुनते ही लगे के कटी डंक नहीं मार दे।
1: साची बात है, डंक तो ही है कि कोई भी जानवर आपकी रक्षा खातर बचाव तो कर ही है।
0: पर एक बात है, गुण तो घने ही है यानी, और इतना ज्यादा गुण है कि पूछो मत। शहद तो मधुमक्खी बनाए करे।
1: बिल्कुल बनाए, अमृत समान है,
0: अमृत समान।
1: आयुर्वेद में तो बहुत बड़ो योगदान है शहद रो।
0: और मैं तो आज सुनी है कि जबकि कई फसलों का बीज भी है एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने में मधुमक्खियां आपकी भूमिका निभावे। सही है कि बात?
1: सही बात है। कह करे ना कि फूल रे माया में एक मकरंद होया करे जिके ने पराग कहया करे।
0: हां,
1: मैं पराग ने जब तई एक फूल दूसरे फूल तक नहीं पहुंचावानी जितने फूल में फूल फल में कौन बदले और बीज कौन बने भी रो। तो बीज बनते ही वो पराग परागकण की क्रिया है, परागण क्रिया है वह बहुत जरूरी है। और सरसों की फसल हो चाहे जीरे री हो चाहे धनिया री हो, सूरजमुखी, ककड़ी, तरबूज।

0: कुछ खीरा मेथी जितनी भी फसलें हैं नी ए मधुमक्खी बिना अधूरी मानी जाए।
1: अच्छा किसी किसी फसलें बताए, एक और बताए, सरसों बताए, जीरा बताइए और काकड़ी बताइए।
0: धाना, सूरजमुखी, काकड़ी, तरबूज, खीरा, मेथी, सगली लगभग फसला है जिनका में बीज बनने का यहाँ जरूरी है। और इन मधुमक्खी के कारण ये फसल रमाया 20-40% उपज जिकी है।
1: हाँ।
0: बढ़ जाए।
1: अरे वाह,
0: सगे सगे जब उपज बढ़ जी तो धन ध्यान है किसान भैयारी अपनी आमदनी है बाबी बढ़ जाया करे। और फूल भी नहीं जड़ा यदि चुकी तरह से परागण क्रिया हो तो फूल भी कौन जड़ा करे। और मधुमक्खी पालन भी कई किसान भाई बंधु है जिका क्रिया करे, शहद खतर तो करे ही है पर चौकी तरह सुबह में बीज लगे एक खतर भी करे।
1: देखो भारत में भी अब होने लग गयी और विदेश समय तो पहले से सुन रहे हैं कि लोग खेती के साथ मधुमक्खी पालन करे। अब अभी तो रात समझ में आयो है कि वे क्यों पालन करे। सर
0: सही बात है। और मधुमक्खी कोई नुकसान पहुंचाने वाला जीव को नहीं, आपने फसला खतर तो बहुत ही बढ़िया मानी जाए और पर्यावरण संतुलन में भी घणो योगदान मानी जाए।
1: एक बात तो सही कह रहे थे, ये भी कही है कि बिना काम खावे तो कोई नहीं कहे। घर घर में देखो आप छत्ता है उनके खावे तो कोई नहीं आप।
0: सही बात है।
1: तो कोई अगर कई बार छत्तो लगा गयो कणी खेजड़ी है अभी मैं छत्तो लगा दे खावे तो कोई नहीं, बिना काम तो कौन
0: करा।
1: रही बात पाल मेरे तो घने लोग पाले भी है, अगर खाने लाग गए तो लोग पाले गया पाले
0: लघु कुटीर उद्योग रूप में काम में ले। तो आप पक्के सके धरती में कोई भी जीव जिनावर है नहीं, भगवान मैंने बनाए हुए तो कोई ना कोई सोच समझ बनाया होगा कि बीरो योगदान धरती में हो सी।
1: बिल्कुल सही बात है, हर एक रो आप रो योगदान है, कोई भी चीज बनोड़ी है तो बीरो योगदान जरूर है। देखिए गीत संगीत भी कई है।
0: हाँ, बीरो योगदान भी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो की बताओ थे की सुनाओ फिर
0: एक गीत सुनावा चौको सो भूंगर खान रो गायड़ो और आप मरुदर देश रो गीत है सब मरुदर देश रो बखान है भी मैं सुनो
1: सुनाओ फिर।

0: महीना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रबंधक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रबंधक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और गरीबी, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन सबको प्रभावित करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब लोगों को होता है। गरीबी की वजह से लोग जलवायु के असर से बचने या उभरने में कम सक्षम होते हैं। खासकर महिलाएं और बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। गरीब समुदाय अक्सर कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं और जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में बसते हैं, उनके लिए खतरा और भी ज्यादा होता है। वह जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार तो नहीं होते, फिर भी उसका सबसे बड़ा असर उन्हीं पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन भूख और गरीबी मिटाने की कोशिशों को भी धीमी कर देता है। क्या आप जानते हैं 2020 में 9.5% आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही थी। पिछले 20 सालों में पहली बार गरीबी बढ़ी है।
5: देखो भाई, एक बात तो है राकेश भाई, कि आज की प्रकृति है नी, ईश्वर निराली बनाई है,
6: बिल्कुल बनाई है।
5: कटी पहाड़ बनाई है, कटी नदी बनाया है, कटी जगह देखो धूरा बनाया है, बरसात बनाई है, बादल बनाई है। प्रकृति कितनी निराली बनाई है,
6: बहुत बनाई है। और रंग रंगीलो जी को संसार है नी,
5: हाँ,
6: इन्हें देखने तो आंखें भी बनाई है,
5: बिल्कुल बनाई है। और इन्हें कारण सी है प्रकृति की सुंदर, प्रकृति रे सुंदरता रो आनंद ले सका। और जरूरी है कि प्रकृति रे जकी सुंदरता है बिर थोड़ी तारीफ

0: करा के पूरे मनसू बनाई है
1: सही बात।
0: और अपने तो सुंदर नजारो देखने वास्ते दियो पर कणी कणी कही है कि विचार है मन रे मैंने के आंखियां जकी है अपने दी है जने प्रकृति ना पा देख पा रिया पण आ प्रकृति मेहरबानी जकी है सब माथे कोनी करी कोई न कोई कारण सु प्रकृति जको है कोई रे जको है आ देखने री शक्ति जको है दई कोनी
1: अपन आसे पासे आप देखा कई लोग जन्म जात सु आंखें में रोशनी नहीं है।
0: हाँ, कई जगह ने बाद में मैंने कोई दुर्घटना मैंने इसो हो गयो के मेरे कारण से मेरे आ शक्ति गई
1: और भरत भाई देखो आप जे आंख माथे पट्टी बांध पर धन के देनी कि घंटा दो घंटा थाना आप काम करना है तो आप तो शायद को नहीं कर सका आंख में पट्टी बांध रहा आप दो घंटा एक जगह बैठ सका आप अपना को लोटोवर पानी पीना है नहीं कोई को नहीं कर सका
0: कोई कर सका
1: पर आप आसे पासे कई एडा भाई बंधुओं ने देखा जिका आप जीवन रो सगलो काम करे और पिछले 10 साल 15 साल 20 साल बिहार रोशनी को नहीं फिर भी आप रे जीवन तई सगलो काम बे कर लिया करे चाहे अंदाजो करे ला और चाहे बिना भगवान अलग सो कोई शक्ति दे दे भी बदौलत बे करे
0: बिल्कुल से। और एक बात और है कि अपार तो जो को है विज्ञान भी लाल कई सालों देख रहे हैं दिनों दिन तरक्की कर रही है और एक चीज तो बहुत पहली हो चुकी है कि कोई नेत्रदान कर ले तो भी सू भी कोई ज्योति है जो कि लाई जा सके आ तो बहुत पहली सू चाल रही है तो इसी स्थिति में नेत्रदान कितो बड़ो दान है कि अभी बाद मैंने कोई जीवन ही जो को है बदल
1: सही बात। देखो आदमी मरिया पछता वो आंखें है नी बे अंतिम संस्कार में लेकिन यदि कोई ओके देख भी मार मरने बाद मारी आंखें मैं दान करूं तो भी आंखें सु दो लोगों ने जिंदगी मिल सके
0: बिल्कुल मिल सके
1: और इ खतर इया को नहीं कि आंखें पूरी निकाल दे आंखें में एक भाग होया करे जितने कोर्निया कहया करे खाली वो भाग निकाल परो और एक जिको आदमी आंखें को नहीं
0: भाई को नहीं पड़े कि कहीं हुई आंखें बड़ी बड़ी दिखे
1: बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बड़ी दिखे लेकिन कई गांव में आज भी लोगों में भय है कि जब आंखें निकाल दें तो अगले जन्म में आंखें मारे होसी या नहीं होसी आप भी सोचे भी लोग
0: नहीं इसको कहीं को नहीं है
1: भय में
0: अगले जन्म में तो भगवान वो पुण्य के साथ है क्योंकि वे दान करुड़ी है
1: दान करुड़ी
0: है पुण्य के साथ है और चौकी ज्योति मिली
1: और अभी सोचो तो बीज आंखें सो को दूसरा आदमी पूरी दुनिया देख रही है तो एज की भ्रम स्थिति है
0: पर आप तो देखो दान की बड़ी महिमा मानी है बड़ी चिरी सी जी की तो जीवता जी आप हड्डिया
1: हड्डिया दे दी बिल्कुल दे दी
0: तो मैं को नरक में थोड़ी है
1: सही बात है
0: उल्टे रो मैं तो कितनी महिमा
1: और कई भाई बंधु तो देखो आप साल में एक बार तो खून रो दान भी करे
0: हाँ
1: वो भी दान काम आवे आगे लोग करे
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो इन तरह आप भी जो जागरूक हुआ थोड़ा बहुत समझ आप रखा नहीं तो अपने भी चीज है कि आप लोगों ने प्रेरित करा पहला खुद तैयार हुआ कि भी मैं आंखें देने तैयार हाँ तो मेरे कोई फार्म भरना हो हॉस्पिटल में जरा बढ़ू भरा और आप इनमें भी सहयोग कर सका
0: बिल्कुल कर सका आ तो चौकी बात करी और अब
1: कार्यक्रम
0: आगे बढ़ा
1: बिल्कुल आगलो गीत सुना
0: सुनाओ फिर

26 साल और एक फनी सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अन्य

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: राकेश भाई देखो गर्मी महीने जो कहीं है कठी भी जवानी तीस तीस लागे कहीं भी जल्दी सी खाने की इच्छा हो
1: सही बात है। शरीर पानी मांगे क्योंकि अपन ध्यान है कि गर्मी में पसीना ज्यादा आवे
0: हाँ।
1: तो शरीर अंदर अंग जी का है नी
0: हाँ।
1: पानी की कमी हो जाए पानी मांगे
0: बिल्कुल जन इन वास्ते क्योंकि घनी भूख लागे कोन कटी जावन पानी तो ले जा रोटी ले रही कौन जावा के सोचा के इतनी कोई भूख लागे कौन
1: सच्ची बात
0: पण मुई लेर जावानी जन जरूर लागे भूख
1: लागे बार लागे हुए कई बार हुए
0: तो इसी स्थिति में मैंने अगर कोई किसान भाई है मंडी आउड़ है या और कोई आउड़ है मेरे साथ इसी जगह तो जरूर उनके पाछो वो घर जावे। अन्नपूर्णा रसोई योजना है ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध है इन मैंने गरीब मजदूर किसान और जरूरतमंद परिवार है उन्हें मोटी राहत मिले और आप नेड़े जठे भी अन्नपूर्णा रसोई योजना रे कोई लाभ ले सके बट ले लो और बहुत ही नाम मात्रा जगह पैसा माथे भोजन उपलब्ध है।
1: और आज की योजना है आज सरकारी एक जन कल्याणकारी योजना है और घनी महत्वपूर्ण योजना है तेजिया बतायो और ये उद्देश्य वो है कि कोई भी आदमी नहीं भूखो नहीं सोए सगला आदमी ने भोजन मिले और कई गरीब परिवार ने आप देखा कि भैया रोज कमाई करे और रोज बखावे लेकिन कई ऐसा मजदूर भी है जिन्हें डेली प्रतिदिन अपने रोजगार नहीं मिले तो बिया खातर आ योजना जी की है वह बहुत ही चोखी है और पौष्टिक भोजन मिले अठे
0: 8 रुपया महीने शुद्ध ताजो और पौष्टिक भोजन तो मिले ही मिले इसके अलावा प्रति थाली की वास्तविक लागत जो है भी मैं 22 रुपया सरकार देवे और 8 रुपया मापा ने मिल जाए 30 रुपया तो देखो थाली पड़े ही पड़े।
1: सही बात है थाली में देखो दाल है सब्जी है रोटी है और चावल है ऐसा मिलिया करे साफ सुथरा भोजन है और पौष्टिक भोजन अपने भाई ने खाने मिले और ठेको जिया की भी आप कभी भूख लाग जाए तो जी मर्दे कुठा पड़े
0: अच्छा, कई बार कहीं है कि रोटी याद हुए पर ले जावा इन वास को रोटी ले जावा एक तो बा अब खाई रहे दूसरो कणी साग ढोलने या खाली जावण जाने आउ तर पत्तो कोनी तो इसी स्थिति में मैंने ले जा कौन सका कई बार इसी परिस्थिति बन जाए देखो बाकी तो जावा जन भातो ले जाओ या सागे खेत जावा जन पर कई बार कटी दूसरे शहर जावा ले जा कौन सका तो सोचा कि एक बार जी में पचो बाहर हो जाए।
1: योजना रो एक महत्व सामाजिक महत्व वो है कि गरीब आदमी ने सम्मान सागे भोजन मिले और पहला कई बार आप देखता कि लोग बाग भूख रहे कारण दूसरा पर निर्भर होता और सरकार ने जब उठा पड़ो कि भी इमें अपन ध्यान रखना है भाया खातर तो आ सरकार जी क्या योजना लाया और इसको कहिए कि गरीब भी आप रहे एक कम से कम पैसा दे पड़ो आत्मसम्मान सु आज की रोटी पानी है बेव्यवस्था गरीब खातर हो जाया करे और आप देखा अभी ग्रामीण क्षेत्र में कई बार काम धंधा कम हो जाया करे सूखो पड़ जाया करे आर्थिक परेशानी हो जाया करे तो भी भगत आई इस प्रकार की योजना है नी बा एक आत्मसम्मान रूप में पेट भरने काम आवे।
0: इसके अलावा जका महिलावा है बिया ने रोजगार भी मिल रही है कई स्वयं सहायता समूह भोजन बना रिया है मैंने महिला आत्मनिर्भर हो रही है सफाई और गुणवत्ता रो भी ध्यान रखी जाए और गांव में तो आज कई लोग रोज योजना रो पूरो लाभ लेने की कोशिश कर रिया या दूसरा ने बता रिया है कि देखो अन्नपूर्णा रसोई अठ लागुड़ी है कोई दूसरा हो तो अठे जीम लो
1: जीम लो सच्ची बात है। तो देखो एडी जी की जन कल्याणकारी योजना हुए नी इस हुई समाज और देश रो विकास हुए उन्नति हुए
0: बिल्कुल हुए
1: और अब थे
0: फूटे सो तो आनंद आ गयो इसी थे बाता करो नहीं जन तो कोई आनंद रो गीत लो
1: आनंद रो गीत लो है देखो गोविंद सिंह राठौड़ अपना पुराना गायकार आ बियारो गायोड़ो एक फूटो सो अपने अपने बीच में सो उठोड़ो गीत है
0: हाँ।
1: पारंपरिक गीत है लो सुनो
0: सुनो

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

जे छोटेडी थाने ले कुटी उबी गाले बार छोटेडी थाने ले कुटी उबी गाले बार कबला रे कबला सुंदर मुंदर से मैंने ही लाड़ रे बल जत्या रे रे दो उंगला मेरे रे बार।

0: भाई गीतड़ो दायो
1: गीतड़ो तो सांत्रो दायो गोविंद सिंह जी आवाज तो ये लागते के कानर में जो है डमरू बाज रही है मिश्री गोल दिया इतनी मीठी आवाज और इतनी जोशीली आवाज है
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखो आप अबार जी को मौसम है भी मैं आप देखा कि नौतप्पा जी को है मेरी शुरुआत होगी है
1: बिल्कुल होगी
0: काल सो शुरुआत ही आज भी चौकी गर्मी
1: बिल्कुल है काल बिचे आज थोड़ी
0: ज्यादा गर्मी है
1: तो आंधी जड़ो वो थोड़ा मौसम
0: और देखो नौतप्पा में तपना जरूरी है आप धरती तपे नहीं मानसून आई
1: धरती तपे नहीं जन वे बादल ने खींचे
0: खींचे
1: चुप कर दे
0: बिल्कुल
1: लेकिन अगर ई दिन मैंने नहीं तपे तो मानसून आगे बढ़ पहुंचे
0: लेकिन नौ तपे में आप ने अपना तो ध्यान रखना ही है क्योंकि आप खेती बाड़ी रो ध्यान रखा पशुआ रो ध्यान रखा लेकिन अपने सागे सागे अपने पशु रो जो है नहीं भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है नहीं तो पशु उत्पादन में दूध पर सीधो फर्क पड़ा है
1: बिल्कुल सही और गांव में तो देखो पशु रो इतो महत्व है पशुधन रो कि कोई आप रे मुंडे पशु केवे कुन धनी केवे
0: सच्ची बात कह रहे थे
1: केवे नहीं
0: बिल्कुल
1: धन तो धन है तो धनी है आप रो
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल ध्यान अपन भी रखने जे परिवार सदस्य रखिया करा
0: ध्यान नहीं रख सनी तो दूध रो उत्पादन घटे ना पशु बीमारी रे चपेट में आवेला लू रे चपेट में आवेला और जे पशु

0: जे लापरवाही शू तो आपने जो आर्थिक नुकसान है
1: तो आप सोचा नहीं, आप कई बार के सोचा
0: कई बार मौसम की बारिश ही वह पसूरी सकबाजी के रोग प्रतिरोधक क्षमता है नहीं कमजोर हुए नहीं तो हो जाए अगर बुरो तो कौन सोचे लेकिन भी खतर तैयार रहना अपन बहुत जरूरी
1: है। सही बात है, सही बात है। देखो ई दिनर मैंने कही है कि पशुओं ने ठंडी छिया की ज्यादा जरूरत है। अगर घर में मैंने कोई दर खतला कूड़ो गए नहीं तो बीरो मैं तो तब उठा पड़े दर खतरे नीचे जाओ तो जको आराम मिले ने वो तो कोई छपरे में आवी कौन
0: और छपरो भी हुए नहीं वो सांतरो बनाना टाट है घास है फूस है और बीमा तो कोई बेल चढ़ा दा और ई भगत तो यहाँ लगे कि भी कोई कूलर जोड़ो कोई इसको प्रबंध करानी कि छपरियो ठंडो रहे मयो
1: और नहीं तो भी छपरे माथे पानी की छिड़काव
0: हाँ, जो तो भी कूलर जिसको प्रबंध कर
1: आराम रहे बोरी लगा में छिड़को तो बोरी खासी देर तक पानी रोक रखे
0: कुल मिला छपरो आपने ठंडो रखना बहुत जरूरी है और सागे सागे पशु ने खाने पीने खातर भी यानी ठंडी चीज देनी जरूरी है। शरीर
1: कई बार देखा है कि भाई लोग कहीं करे कि वो पानी खेली में गलुड़ हो गए तो छोड़ दे अपन वो दिन रात तो जाए
0: सही बात है
1: पीजी को नहीं तो और सुनी हुए
0: वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है ठंडक रही और वो ध्यान रखा कि दिनों के सिंजा जिस टाइम ठंड हो जाए मौसम ठंड हो जाए बी टाइम पशु ना पा खोल सका आ गलती नहीं करा कि चढ़ती धूप है और बी टाइम आपा पशु ने खोल दियो तो लोरी से पेट में भी आ सके और खाने पीने में मिनरल मिक्सर है हरो चारो है दाना पानी
1: खनिज के वहां जगह खनिज
0: भी सु पशु कहीं स्वस्थ रहे सी और संतुलित भोजन देना बहुत जरूरी है।
1: हाँ आ बात तो है देखो ठंडो बासी जहाँ आपने नुकसान करे नहीं वो आने भी कर सके तो रात्रि जो है कोई खानो बचोड़ो है तो वो पशु ने देने को नहीं है क्योंकि वो बिना भी लाग कर सके
0: पानी का प्रबंध है तो आप दोनों पशु ने दो भगत नवा सका और पशु की चमड़ी के साफ सफाई रखनी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल और न तो अपने पशु मैंने दोपहर खास कर बारह चरावने नहीं ले
0: नहीं ले जावा तो
1: ठीक है या तो सुबह भेगो बीने ले चरा लो या सिंगेरा चरा लो बारह को नहीं भेजने दोपहर वो बारह जावे कहीं ठकट जावे कौन बीरो कहीं ध्यान
0: और जय पशु अपनो यह लगे कि भी सुस्त दिख रही है खाने पीने में मन नहीं है बीरो तो अपने तुरंत बिना देरी किया अपने डॉक्टर साहब ने बुलाना है प्राथमिक जिका भी अपन कंपाउंडर साहब है बयान बुलाना है और पशु ने चेकअप करावा कि भी पशु ने कहीं समस्या है
1: बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल
0: जिको भी दवा पानी देना है दे परो और पशु ने स्वस्थ जल्दी से जल्दी अपन करा
1: बिल्कुल करा पर अब भाई लोग अंदर थोड़ा निजर कराए गीतड़ दो
0: हाँ बिल्कुल

0: अब्दुल शक्कुर सुलेमानर गायडो ओ फोटो सो भजन होसा
1: भजन सुनियो और जिसुर हो गयो
0: बिल्कुल
1: तई जको है मन जको है भक्ति में भरी गयो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अब्दुल शक्कुर सुलेमान रे आवाज भी घणी चोखी लागी
0: चोखी सा
1: यानी मीठी आवाज रे
0: मैंने और बिल्कुल देखो जिसुर जो दोवेला जो टाइम पर अपन मानसून आवेला और भी पहले अपन अपन खेतरी तैयारी कर लानी तो और ज्यादा जिसुर हो सके
1: खेत में गहरी जुताई रो अब सही समय है गहरी जुताई खेतर में करी जा सके और आवनाली बरसात में अपन दरखत लगाने हैं इरी भी अबारू तैयारी करनी है
0: तैयारी करनी है अब देखो तैयारी करनी है अपन एक हरजस सुनावा भाया ने
1: सुनाओ फिर
0: फोटो सो है बंसीलाल जोरी रो गायोड़ो उदो कर्मन की गति न्यारी।

0: हर्जा सुनियो और अब घड़ी इशारा कर रही है कि विदा लेने नु भगत आ गयो है।
1: तो सीख रहे हो आपके साथी राकेश कुमार जोशी
0: और भरत कुमार जाजड़ा ने
1: मोकला मोकला
0: राम राम।

तथा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्रामीण जगत आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 7:45 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सुनिए सबसे पहले ये भक्ति गीत जिसे गाया है फैयाज खान ने। इसके रचनाकार हैं कबीरदास जी।

मीराबाई द्वारा रचित इस भक्ति गीत को गाया धनंजय भट्ट ने। और अब सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में यह भजन, जिसके रचनाकार हैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी और गायक कलाकार बद्रू।

इस भक्ति गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनिए दुल्हन एक रात की, इस फिल्म से मोहम्मद रफी को। गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खान और संगीतकार मदन मोहन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। और अब सुनिए दुल्हन बनू मैं तेरी। इस फिल्म से उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथियों को, गीतकार हैं देव कोहली और संगीतकार राम लक्ष्मण।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म का नाम दुलारी, बोल शकील बदायूनी के और संगीत नौशाद का। लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों को फिल्म का नाम है दुलारा। गीतकार रानी मलिक और संगीतकार निखिल विनय।

गए कलाकार मोहम्मद रफी, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अभी आपने ये गीत सुना और अब सुनिए दुकान फिल्म से अलका याग्निक को। गीतकार हैं अरुण भैरव और संगीतकार अल्ताफ राजा।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनिए सुरेश माथुर और साथियों को

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत मतगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: मतगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और अब सुनिए वीरेंद्र शर्मा का गाया ये लोकगीत।

0: जी के श्लोक भजन को गया जगराम भोपा और साथियों ने। इस श्लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और उसके बाद News@9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
4: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेन

0: ली वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
3: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
4: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
3: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसर्स एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपकी बुनियादी गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य

0: खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी

0: परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration. Condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav, and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
2: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Red Fort last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: The committee will submit its report within 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
1: Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sancho border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
4: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
5: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन

0: Traffic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises map of onion stalks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold in men's freestyle event in Vietnam. That's all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 9:15 हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी। गायक कलाकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी।

कराही, इस फिल्म से अभी आपने सुना अमित गांगुली को, संगीतकार थे किशोर कुमार, और अब सुनिए डोली फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का ये गीत, संगीतकार हैं रवि।

श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर का। ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का आगाज करते हैं अशोक वर्मा की गई इस गजल के साथ।

अभी आपने सुना उषा टंडन को, और अब सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में एक और गजल गाए कलाकार हैं अब्दुल लतीफ और साथी।

गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 10 बज रहे हैं।

और अब सुनिए फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला।

थीं लता मंगेशकर, फिल्म का नाम दो रास्ते, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम है सुराणा मोहल्ला बीकानेर से नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल सुराणा, शरद सुराणा, मयंक सुराणा, विमला भाणी, लालेंद्र होलेंद्र आचार्य, रोशन अली मिस्त्री, लालगढ़ बीकानेर से अस्कर अली पंजाब, गिरनवर अली मुमताज, सोनू टीना, वहीदा साहिदा, ताहिरा, एम ए पवार, खातून बेगम, शीतलागढ़ बीकानेर से मोहम्मद शफी खींची, शरीफ खींची, शुजैन आजम खींची, अकमल हुसैन, अमजद अली, अमर सिंहपुरा बीकानेर से मोहम्मद अफजल, मुमताज अली, सिकंदर अली, शबनम बानो, मोहम्मद कैफ और उनके परिवारजन, मोहम्मद सरबाज श्री डूंगरगढ़ से मोहम्मद असगर पवार, अकबर राबिया मुन्नी, बरकत हाजन, अजीज गुलजार असगर, जेनवी कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राष्ट्रीय और गौरव शाही, पवनपुरी बीकानेर से भंवरलाल सोनगरा, गीता रानी, राज मनोहर लाल, बीएल सोनगरा, डॉक्टर सोनू दायमा, सरोज सत्यनारायण दायमा, अखिल मूलचंद सोनगरा, सुनीता प्रथमराज, हंसराज कृष्णा, मुकेश सोनगरा, सावित्री मिस्त्री, सीताराम पवार, दीफू पवार, आशीष जजन सोनगरा।

बीकानेर से एलसी शहजादा, कमला देवी पवार, राजकुमार, गीता रानी मयंक, अनन्या, सत्यनारायण पवार, लालचंद पवार और इनके साथी। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमें पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम इस प्रकार हैं। ब्रह्मपुरी चौक बीकानेर से जीपी दवे, सुरेश दवे, गोपाल दवे और इनके परिवारजन। चौतीना कुआं बीकानेर से राजेंद्र कुमार पांडे, इनके साथी और परिवारजन। रानी बाजार बीकानेर से रानी झांब, बिट्टू झांब और इनके साथी। कमला कॉलोनी बीकानेर से सुभाष खत्री और इनके परिवारजन। बीकानेर से रमजान अली लखारा और इनके साथी। कोहरियान मोहल्ला बीकानेर से इकरामुद्दीन कोहरी और इनके साथी। विनोबा बस्ती बीकानेर से हरीश कुमार सियोता, इनके परिवारजन और साथी। चुनगरों का चौक बीकानेर से एस मोहम्मद अली जीतू, शबनम बानो, अख्तर बानो, महनाज बानो, साजिद मुगल और इनके परिवारजन। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म दिल तुझको दिया का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं राजेश रोशन और संगीतकार राजेश रोशन।

ये थे किशोर कुमार और साथी, फिल्म का नाम दो प्रेमी। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहते थे देशनोक बीकानेर से गोपाल दान, प्रकाश दान, भूम दान और इनके परिवारजन, शिकोला से फूसराज सोनी और इनके साथी और परिवारजन, दौलतपुरा श्रीगंगानगर से शिवलाल, शांति, मंजू, मोहित, हेमंत बेनीवाल, सादुल शहर से ओम प्रकाश, मनो प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, कोलपोल उदयपुर से गोपाल, कांता नैनवाया, गोपाल, तिलक सक्षम तंबोली, गिरिराज सोनी, घनश्याम और जगदीश मोदी, गोविंदगढ़ शिकरणपुर से राजू खुश दिल, उर्मिला गुड्डू, जीनू मनु, आदित्य भूमि, राखी अमृत, शिव सेठी, स्माइल टूटे जा। अरैयावाला हनुमानगढ़ से कालू खांदामामी और इनके परिवारजन, बाड़मेर से बबलेश टेनी और मनीष पंवार। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं बाड़मेर से खुदा बख्श, बच्चू खां, मोमिन खलीफा, चौमेला राजस्थान से कैलाश चंद्र गर्ग और इनके परिवारजन, हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद शमीम बेगम, इमरान खां, इरफान खां, तापू जोधपुर से विष्णाराम बालियान और इनके साथी और परिवारजन, रटलाई झालावाड़ से प्रभुलाल, मनोहर बाई और बागरी परिवार, फरांसी से राजकुमार, सरजीत सिंह और प्रमोद डूडी, डबवाली से राजेंद्र, अंजू और मोहित नारंग। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म दिल की राहें का ये गीत, जिसे लिखा नक्श लियालपुरी ने, संगीतकार है मदन मोहन, गायिका लता मंगेशकर।

फिल्म का नाम दिल ही तो है। गायक कलाकार मन्ना डे, गीतकार साहिर लुधियानी और संगीतकार रोशन। ये गीत अभी आपने सुना और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश करने वाले श्रोताओं के नाम हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध निखिल अंकित साहिल कांगड़ा, हांसी शहर से राजू बबीता मिगलानी, सुभाष योगी बब्बू डब्बू और इनके साथी, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश तारणी, सूरज ज्योति रेयांश और गुड़िया ठाकुर, बाबा कुटी उफरा से प्रेम यमुना तुलसी हेमलता साहू, पटियाला से मुकेश नीलम नितिन पलक करण गीतू निहारिका और वंश बट्टा, बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला हैप्पी जे एस नायक शोभा और डागला परिवार, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबिर राही महाराज जहां और इनके साथी, बोरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुनत नेहा जैन दीपक मयंक चेतन दीक्षा और कुश मुनत। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश के बाद अब अगला गीत है फिल्म दिल एक मंदिर का, लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र का गीत और संगीतकार शंकर जयकिशन। और इस गीत के लिए फरमाइश करने वाले श्रोताओं के नाम हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा और इनके साथी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, धतरेंगी से भागवत वर्मा और इनके साथी, सनावद मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री शफी खत्री इदरीश नूर मोहम्मद इरफान कासिफ हासिम मीना, डबवाली से राजेंद्र रंजू और मोहित नारंग, डबवाली से बसन सिंह चन राजकुमार सुनीता कुलदीप गांधी, डबवाली से ही जेके बाकोलिया सुनीता संजय अनिल मीनू बाकोलिया, प्रमिलागंज आलोट से बलवंत कुमार वर्मा राजूबाई माया शोभा राहुल ज्योति अतुल प्रियांश और ऋषि वर्मा। लीजिए श्रोताओं आपकी फरमाइश का ये गीत, प्रस्तुत है आपके लिए

ये थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, फिल्म का नाम दो कलियां, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि। और इस गीत को सुनना चाहते थे हमारे श्रोता मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, सौरव शर्मा, मलोट पंजाब से छिंदर सिंह, छिंदा सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, सी एस बेगाना, डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू जाजोरिया, मलोट पंजाब से ही राजीव, रजनी, आरती, तनिष, सेतिया, सतीश, सीमा, शाइना, विशाल, सुपरिया, अनमोल, धर्मपाल, रमेश मिगलानी। जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और आराध्या। भिलाई से मुकेश, सरिता, गौरव, गरिमा शर्मा। साथ ही इसी गीत के लिए फरमाइश की गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित आर्य ने। और कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं शिवाजी नगर वड़ाली देशमुख से राजेश, शिवसागर, इंदिराबाई, सुनेना, खोबर खेड़े, जलगांव से राम, दीपाली और स्वराज धाड़े, अमरावती से सुनेना और पावन भोड़े, रिंगनी से दिनेश और करुणा वर्मा और इनके साथी, फाजिलका पंजाब से भूषण, विशु, विशाल, टिवांशी, शालिनी, आरवी, लाडी, जीवन सिंह बुक और खेड़ा परिवार, भरभूजी मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय और इनके परिवारजन, रोपड़ पंजाब से मीका, बलविंद्र, जयतेग विरक, हरदेव मीका, लुधियाना से विनोदपुरी, इनके परिवारजन और साथी, बठेना से बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा और इनके साथी, भिवानी से कृष्ण मेहरा, इनके परिवारजन और साथी। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म दिल तेरा दीवाना का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। संगीत शंकर जयकिशन का है और बोल शैलेंद्र के।

ये थे महेंद्र कपूर, फिल्म का नाम धर्मपुत्र, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार एन दत्ता। इस गीत को सुनना चाहते थे मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, कालका से शुभचंद्र बजाज और इनके साथी, करनाल से जग्गी दुआ और इनके परिवारजन, इंदौर से जगदीश चौहान और इनके साथी, मुरादाबाद से अयूब खां, इरम गुड़िया, शुएब, नावेद खां, मोहम्मद फरीद अंसारी और इनके परिवारजन, जफर हुसैन और इनके परिवारजन, नाहन हिमाचल प्रदेश से रज्जाक मोहम्मद और इनके परिवारजन, हरिपुरा झज्जर से प्रदीप वधवा और इनके साथी, अहमदाबाद से भालचंद्र वड़के और इनके साथी, भिलाई से अशोक श्याम कुमार इनके परिवारजन और साथी। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं मधुबनी बिहार से हेमलता सज्जन, इनके परिवारजन, भाटापारा से प्रमोद साहू और इनके परिवारजन, जलालाबाद से सुरेश गगनेजा, इनके परिवारजन और साथी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और इनके परिवारजन और साथी, मेहरनगर महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाकर, इनके परिवारजन और साथी, विश्वकर्मानगर नागपुर से शैलेश गंवाकर, इनके परिवारजन और साथी, भिलाई से प्रताप पांडे, इनके परिवारजन और साथी, शिवाजी चौक कटने से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संतोष शर्मा, रजन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा, पंचू सोनी, पावन यादव, सत्तू सोनी, अरुण कन्नौजिया, संजय सोनी, लालू सोना और इनके परिवारजन, नरगोड़ा सीपत छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, इनके परिवारजन और साथी। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं धनवान, इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में साहिर लुधियानवी का ये गीत। संगीतकार हैं हृदयनाथ मंगेशकर।

और श्रोताओं आप कार्यक्रम का आखिरी गीत और इसे सुनने के लिए पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं राम सिंहपुर श्रीगंगानगर से, अशोक बब्बर इनके साथी और परिवारजन, मऊ मांगरोल बारा से श्रवण लाल योगी इनके परिवारजन, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा और इनके परिवारजन, जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान इनके साथी और परिवारजन, जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खट्टक इनके परिवारजन और साथी, गोविंदपुरा नीम का थाना से दातार सिंह इनके परिवारजन और साथी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा इनके परिवारजन और साथी, सैंसवास झुंझुनू से

किराम रेवाड़ और इनके परिवारजन, गोविंदगढ़ माजीवाला शिकरणपुर से राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला और इनके साथी, ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं ये गीत जो हमने लिया है फिल्म धर्मात्मा से। गायक कलाकार हैं मुकेश और कंचन, गीतकार इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: मीडियम 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 11 बज रहे हैं। अब समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी।

0: मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary for